नमस्कार, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि। तदनुसार आज दिनांक 16 जून सन 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाश पाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में कहीं पर भी ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए सुन रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी आप हमें प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। प्रस्तुत हुए कार्यक्रम विवरण, आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

सुबह 9:10 से आप सुनेंगे रामचरितमानस गान, 9:20 से आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और 9:40 से आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जैविक खेती द्वारा अच्छी उपज के साथ भूमि संरक्षण विषय पर सहदेव बांगड़ा की श्री भंवर सिंह से बातचीत। 10 से आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के, और 10:30 से आप सुनेंगे गाने ने तराने ने। 11 से आप सुन पाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

शाम 5 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फोन करें गीत सुने, 5:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत, और 6:05 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। माटी के स्वर का समय रहेगा शाम 6:20 से। 7 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान पाणी। सात बजकर 30 मिनट से आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 8 बजे से आप सुनेंगे एल्बम सॉन्ग, और 8:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम घूमर। लोक संगीत का कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ से। 9 बजे से आप सुनेंगे सुगम संगीत, और 9:25 से आज आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में समाचार सेवा एकांश द्वारा विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आतंकवाद विषय पर कार्यक्रम। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और बच्चों में दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को यह विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। श्री मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, सरकार और वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य नवाचार और विश्वास, जिम्मेदारी तथा मानवीय गरिमा पर आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये पहल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी को नए सिरे से परिभाषित करती है और इससे युवाओं को शासन, नीतिगत विचार विमर्श और संसदीय कार्य प्रणाली की व्यावहारिक जानकारी मिलती है। मंत्रालय ने कहा है कि विकसित भारत युवा संसद एक ऐसा जन आंदोलन है जिसको लेकर भारत के युवाओं की ऊर्जा, विचारों और आकांक्षाओं की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर में आयोजित शिविर में पट्टा, लीज, भवन निर्माण स्वीकृति और नामांतरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता के साथ समाधान किया जा रहा है। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि शिविर के पहले दिन 327 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।
2: जो हमारे एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही हैं, जो हमारे पास अपने CCC सर्विसेज के ऊपर ऑनलाइन हैं, उन लोगों को हम मैसेज भेज रहे हैं कि जिनकी एप्लीकेशन लास्ट स्टेज पे है उनको जैसे आज हमने बुला रखा है और जिनमें अभी थोड़े से काम है उनको जब नेक्स्ट कैंप लगेगा उनका तो बुलाएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि लगभग जो हमारे 6000 से ज्यादा CCC पे पेंडेंसी चल रही थी वो सारी पेंडेंसी को हम इस कैंप में खत्म करेंगे। इसके साथ साथ जो नई एप्लीकेशन आएंगी उनको भी इस कैंप में टेकअप करके खत्म करेंगे।
0: प्रदेश के अन्य जिलों में भी इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर की लाभार्थी सुनीता अग्रवाल ने आवासीय पट्टा मिलने पर खुशी जाहिर की है और सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: मैं सवाईमाधोपुर जिले की रहने वाली हूँ।

0: मैं बट्टी के लिए 1.5-2 साल पहले आवेदन करा था, तो आज हमें प्राप्त हुआ, हमें बहुत खुशी हुई और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री साहब का दिल से आभार करना चाहूँगी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रदेश में गिव अप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से 82 लाख पात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटवाया है। वहीं 84 लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को योजना से जोड़ा गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि नए जुड़े लाभार्थियों को अब मुफ्त राशन के अलावा निःशुल्क इलाज, गैस सिलेंडर सब्सिडी और 5 लाख रुपए की दुर्घटना सहायता का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का गिव अप अभियान की देश भर में सराहना की जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा की है। कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक में श्री मोहन ने सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षार्थियों की सुगम यात्रा के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा। इधर प्रदेश में परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा में राजस्थान के 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 27 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने CBI की उस अर्जी को मंजूरी दे दी है जिसमें नीट यूजी पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों से जेल में पूछताछ करने की इजाजत मांगी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कल पुलिस मुख्यालय में हुई अपराध समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि संगठित अपराध और धमकी देकर वसूली करने वाले गिरोहों पर लगाम कसी जाएगी। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों का उपयोग करते हुए गैंगस्टरों द्वारा बनाई गई अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने और उनके बैंक खातों को सीज करने के भी निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को नशा तस्करी रोकने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाने को कहा है। इसके अलावा साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत हो रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार, स्वच्छता, पीने का साफ पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान की थीम स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार रखी गई है। इसके अनुसार सभी जिलों में गतिविधियां की जा रही हैं। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को दस्तरोधी दवा देंगे।
2: 5 वर्ष तक के बच्चों में दस्त रोगों से होने वाली गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर घर संपर्क कर दस्त रोग की पहचान, बचाव और उपचार संबंधी जानकारी देंगे तथा ORS पैकेट और जिंक टैबलेटों का वितरण करेंगे। सभी चिकित्सा संस्थानों में ORS कॉर्नर स्थापित कर ORS तथा जिंक टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही सही से हाथ धोने की विधि, स्वच्छ पेयजल उपयोग, भोजन को ढककर रखने तथा खुले में शौच से रोकने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा ताकि दस्त रोग से होने वाले गंभीर परिणामों से बचा जा सके। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
1: और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान फलौदी में रहा। वहीं जैसलमेर में 41.3 और बाड़मेर में 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बीच कल कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां हुई। श्रीगंगानगर, सीकर, कोटपुतली बहरोड और चूरू में तेज धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। जयपुर और पिलानी तथा झुंझुनू सहित कई शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का ये दौर जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और बच्चों में दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी नागौर के चिमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उनीदे हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:20 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: आप सुनेंगे जैविक खेती द्वारा अच्छी उपज के साथ भूमि संरक्षण विषय पर सिद्धेव बांगड़ा की श्री भंवर सिंह से बातचीत।
1: टेम टेम माते जगह अपन खेती में चौको काम करे है जगह चौपाल पर नोत्र बुलाया करा बहुत जगह बातचीत करता थे पूर्ति करा और बाम में जगह कहीं इनका नुआ काम के डूडा नवचार के डूडा है बाबी बात रही है जगह बांग हिवड़े उमाइन खोदर थंते में पूर्ति करा तो आज का अपन का पावना जगह ना नोत्र बुलाया मैं थकी और कौन करा दू। राम राम सा
2: राम राम सा राम राम सा।
1: क्या नाम है साहब को?
2: भंवर सिंह नाम है।
1: भंवर सिंह जी आप कौन सा गाँव करे उन वाला?
2: गाँव तांतवास है।
1: हाँ
2: तांतवास में रेवास करा।
1: मैं आपने पूछना चाहूँ
2: आज आप रे आकाशवाणी रे मच माते बहुत बहुत दिलरी गरे हूँ। अशोक कुमार जी गोयल साहब रा धन्यवाद बुलाया है हम माने और पूछो आप कहीं बताओ।
1: मैं आपने पूछना चाहूँ भंवर सिंह जी की जैन काम तो सगड़ा ही लोग करा खेती करने वाला लोग।
2: हाँ
1: चुको आदमी नयो काम करे कोई चीज ने नवाचार करे तो बिना सब जगह भी ओलखाण हुआ तो आप यान को कहीं खेती में नो काम कर दियो के माने मजबूर कर दिया माने था ना तो बुला रहा साथ बातचीत कर
2: मजबूर तो कहीं कर दिया खेती में नयो काम तो कहीं है खेती करो कोई जैविक खेती करो बढ़िया करो चुको भी हूँ कहीं है कोई शरीर में ही तो रोग को लागे नहीं आप घर जिमन ने राका देने और पशु धंधे ही रोग नहीं लागे आगे बीके भी भाव ही है। यूरिया डीएपी की खेती है जबकि सब गंदी खेती खेती करो जैविक
1: जैविक खेती जाना अपन सरकार भी बार बार बयान चेता रही है भाई अपन जैविक खेती करने चाहिए करने चाहिए थाने कितना साल हो गया जैविक खेती करते
2: माने 4-5 साल हो गया जैविक खेती करता ने और घरे ही भेड़ बकरियां रखा घरे ही खाद बनवा और कोई तरह रो रोग रपाट नहीं है सब बढ़िया। 1 साल तो जैविक खेती हमारे धीमी हुई कम हुई और भी आगे तर तर तर तर साल साल बढ़ती गई।
1: जैन आप बात करा कि भाई देसी दाव डंडा गोबर है भेड़ बकरिया की मींगण है आप खेती में काम में लो।
2: हाँ लेवा बिल्कुल।
1: तो मैं आपने पूछू जैन आप बात करा कि चौमासा की आप खेती कौन कौन सी खेती करते?
2: चौमासे में तो अब कपास लगावा मूंगफली लगावा 15-20 बीघा में और बाजरी है घरे जीमन वास्ते 10-15 बीघा लगा लिया और बाकी गवार मूंग रेड़ा लगावा।
1: देखो बात यह कि कपास की खेती लगाओ कपास में बहुत ज्यादा कीटा प्रभाव रही अगर है तो हाँ। आप कई हिसाब उपचार करो आपकी खेती को कि आप मन कीटाणु कई हिसाब मन नष्ट करो मन
2: आप जैविक खेती करो नहीं धीरे धीरे कीटाणु अपने आप खत्म हो जाए और पड़ भी जावे तो ड्रम रे मायने गोबर मिलाई लो और नीम रा पत्ता मिलाई लो एक ड्रम में 200 लीटर ड्रम हुए बीर मायने 10 या 15 किलो नीम रा पत्ता और 10 या 15 किला गुड़ मिला और 2-4 दिन बिन घोल रखो 5 दिन पहली और भी हूँ स्प्रे करो आप छिड़काव करो जो को कोई तरह की लट कीटाणु आप रे खेती रे मायने नहीं पड़ सके।
1: बहुत ही फूट रही बात पता भंवर सिंह जी की भाई जाना अपना गुड़ है नीम है
2: हाँ।
1: आपको गोल बना ले ऑर्डर में बाद में छिड़काव करो
2: छिड़काव
1: जन आप बात करा कि आप उत्पादन की बात करा पैदावार की बात करा तो वो जो जैविक आप उत्पादन लेवा और एक रासायनिक उत्पादन लेवा तो अपन कतो फर्क लगे था ना कि भाई आप फसल ले जाएगी जैविक फसल ले जाएगी भी बढ़िया पैदावार दे देवा
2: नहीं तो साहब ऐसी बात है कि उत्पादन में 1 साल तो फर्क आयो सा पहली मैं भी जैविक खेती करता यूरिया डीएपी हूँ और भी हूँ बाद में एकदम बंद करी देने 1 साल तो फर्क आयो क्योंकि यूरिया डीएपी रो जमीन रे नशो बन गयो
1: बस एकदम फर्क आयो था पैदावार कम
2: हो बेटा
1: डिगे कोनी
2: मन तो डिगे ही बचे एकदम फर्क आवे जन मन तो डिगे ही
1: है कौन सोचो
2: बिल्ली कहूँ बना लाइट रो लेकिन दूसरी साल भी हूँ 4 गुणो हो गयो
1: अड़ियोड़ा रिया के
2: बाद अड़ियोड़ा रिया बिल्कुल अड़ियोड़ा रिया एकदम हम ही अड़ियोड़ा रिया भी हूँ आगे 4 गुणो हो गयो और मान बताऊ ना आदमी भी की हो 1 साल आप रे कम हुएला
1: नारायण खड़ो है
2: में नारायण खड़ो है सा नेचे में नारायण खड़ो है और मैं तो नेचो राय की और भी हूँ आगे 4 साल हो गया लगातार जैविक खेती में ही चला कदी कोई यूरिया डीएपी घर में ही प्रवेश नहीं करा
1: मैं बात फूट रही है आपकी
2: पशुपालन ही रखा और मैं भी जिमा कोई धान तो आप पशुपालन ने क्या खराब करा गाया भैंसिया यूरिया डीएपी री मूंगफलिया रो चारो खाऊ गाया भैंसिया चर्चर वार पाची फिर की बोलगी
1: यानी गबड़ कोनी
2: टाइम गबड़ कोनी रे
1: बच्चा कौन लागे
2: बच्चा रही कौन तो
1: थोड़े दिनों बाद पाची।

0: में जा
1: फिर जा। और मैं हगी देसी नीरो ना कहा से कह एक एक बारी को फिर
0: वो तो फूट थे पे बहुत सी बात यान की करूँ के हाँ। जानकारी था काई माध्यम हुई को था करने अति बात
1: माने माध्यम हो गयो सा हे मारे घरे 20 साल लाया भेड़ा 20 भेड़ा लाया 20 बकरियां लाया जो अबे तो 50-60 नग है और गया तो मारे पहले ही 5 4 और भैंसिया हैं दो और वही गोबर में मिला ना कहा और भी गोबर वाली जगह आप कने आप खेत नो देख लीजिए जो आपने पतो साल जी के जैविक में खितोग हुए और बिना जैविक में खितोग हुए
0: नहीं बात तो देने टेम टेम अपन सरकार हाँ। भी अपन चेतारी के भी जैविक खेती
1: भगवान ही कोई ऊपर वर्ष नालो कने रूस जाए तो वह एक अलग चीज है बाकी धान वो अनाज है नी एवरेज भी तो ही दे रही हो। अब मारी तांत वासी कांकड़ में 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल बीघारो 0 हुए 1.5 2 0 हुए जैविक में भी तो ही हुए और यूरिया डीएपी में भी तो ही हो रही हो।
0: तो जैविक का तो दामड़ा चौका मिले बाजार
1: दामड़ा तो दूसरा तो 1000 रुपया बता ही मिले
0: तेज मिले
1: तेज ही मिले और अपने खाउंड ही बढ़िया है खाउंड वास्ते ही बढ़िया है।
0: जेना आप बात करेंगे सियाड़ो भी खेती करो थे
1: हाँ सियाड़ू खेती करा
0: सियाड़ू खेती में बार लाटा खड़ा निकल रहा है तो इस टाइम आप कौन कौन सी फसल लगे
1: अब यार तो कहीं हो 0 हो 20 एक बीघा में 0 हो और 20 एक बीघा में इसब गुड़ हो और 10 एक बीघा में ही कणक और 10 एक बीघा में ही सरसों और तो ही धान भाई
0: क्या उत्पादन
1: 5 बीघा में ही सौंफ
0: क्या रही उत्पादन नहीं
1: बहुत बढ़िया रही हो अपने तो बहुत बढ़िया रही हो सब तकड़ो रही हो और लोग घने दूसरा तो भाई कहो के थे यार खाद यूरिया डीएपी नाको को नहीं तो मुग ना कर कहीं करा अपारे तो दान राम जी ही दिए खड़ो है क्या हामी करा खराब करा खेत रे नशो करा एक तो आप एक साल एक कट्टो यूरिया डीएपी यूज ले तो दूसरी साल दो कट्टा लेना पड़ी तीसरी साल भी अगली फसल में 4 लेना पड़ी और तो जमीन रे धीरे धीरे नशो हुए नशो 2 साल में भी जमीन ने करे हो जो को वी टेम कहीं पाचो करियो नी जैविक रो काम तो 1 साल बिल्कुल दान हुई ही को नहीं क्या के नशो हुई को नहीं नशे भी ना दान हुए को आ बात
0: देखो आप बात करा के जन बोर सिंह जी जेन जैविक खेती करो बी टेम जेन आप सियाड़ो फसल लियोड़ी फुहार सिंचाई पद्धति करो थे तो
1: हाँ सिंचाई हूँ
0: एक चीज थे मन बताओ कि जेन अपा एक तो जैविक खेत में जेन मान लो गेहूं कणक लगा दी एक में आप रासायनिक खाता डीएपी यूरिया दे दी अब पानी पवन तो ज्यादा तीस कौन सी फसल करे
1: ज्यादा तीस तो यूरिया डीएपी वाले करे
0: ज्यादा पानी मांगे ना
1: ज्यादा पानी मांगे तो गर्म हुए बात तो एकदम बबक रही यूरिया डीएपी जगह जमीन रिमाइन नागानी बात तो बबकी बबकी जन का धानी ऊंचो आई ऊंचो आई जन वो तीस कहां सी जमीन तो पानी तो उकाई इन वास्ते यूरिया डीएपी हूँ सभी किसान भैया नहीं कहना चाहू आज जोड़ निवेदन है यूरिया डीएपी मत ही नाको आप एक बार करो ट्राई आपने पतो चाल दी एक बार कम हुई लेकिन दूसरी बार उड़ो ही पट सी बटे
0: नहीं मैं आपने पूछू चौदह दिन मोटा मोटी बडरे भी कह था कणक ने 7 पानी देना
1: 7 पानी
0: भी टाइम अपने जन जैविक खेती का साधन ही हाँ
1: साधन ही हाँ भाई
0: 7 पानी भी जाऊँगा अब बार की जगह ट्यूबवेल चारनी है आपने ध्यान है लाइट भी घनी आवे फवारों में पानी पवाना ज्यादा तकलीफ भी होना कई बार भयो मिला भाई केवन कहता पानी पा दिया कोई के 10 पा दिया कोई के 12 पा दिया अरे भैया ज्यादा पानी के मांगो तो 30 जावे को नहीं
1: 30 जावे तो 30 कहू जाए यूरिया डीएपी ना का नहीं जन 30 नहीं जावे तो
0: मेरे भाई
1: आप कुछ भी कर लो यूरिया डीएपी ना को नहीं 30 जावनी नहीं है जमीन री आप तो 30 रोके और पाचो वीर माई ने हड़ भवा वो तभी निकला भाई जमीन ने कर दे पत्थर जड़ी
0: बस का ही साहब होते तभी निकलो खड़ा
1: मैं तो तभी आई ने साहब आप साधारण निकाटा लेकिन यूरिया डीपी ना क्यूड़ी नी वहां जमीन कड़क बन गई
0: आप हम बात
1: एक महीनों बाद में
0: तांतवास गांव के इधर कितनी ट्यूबवेल है
1: ट्यूबवेल है तांतवास गांव में लमसम 1200-1300
0: मोटो गांव है
1: हाँ मोटो गांव
0: तो जैविक खेती करने वाला कहता भाई होते
1: जैविक खेती वाला तो मिला मे था ने कोई 10-15
0: बाकी
1: सब यूरिया डीपी वाला जैविक काला में था 10-15 मिलना जो कोई जोड़ना पड़े क्या के कही है जगह ध्यान में कम है जैविक नाम ले जन के नहीं हो पांच बार पानी है और बाद में पानी खत्म हो जाए, एक बार जमीन में फूल नहाकर ले लो नी काम में। अरे पांच बार पानी है लेकिन एक आप अभ्यास करो, मारे दौड़ी दौड़ी हजार भाई इतनी 500-800 टूबे ले और मारे हगे सीमा रे माते टूबेला है जकिया रे माई ने 33-33 पाइप लगाए दिया। मैं भी हाथ ही खोदे टूबेल तो 33-33 पाइप लगा दिया और अपनी टूबेल रे माई ने 27 पाइप ही चाल रिया है।
0: कारण
1: पानी ने यूज ला तरीके यूज ला, यहाँ बेफालतू थोड़ी डोला पानी ने तरीके यूज ला डीगी बनेवड़ी फवारो जितनी जरूरत है भी तो डोलो
0: सही है।
1: ज्यादा पानी ढोलने को कहीं ज्यादा फायदा थोड़ी मिले।
0: कई भया या सोच है
1: कई भया रे तो सोच है उल्टी पानी एडी सोच है के भाई अपारे 10 भर पानी है जे जीव होरो कर लो लेनो है जो को ले लो जमीन में 10 साल बाद में कोई पानी है न कोई बात है पछे हगड़ा ही बैठा रहे। अरे गेला भया मैं आ कहनी चाहू पानी बेफालतू मत डोलो पानी जीतो। आ कई भाई तो एडा भी है जो को दड़ा है धोरा टीबा जगार माई ने टूबेल चालू कर पाइप लगा दिया पानी ढूंढे पूरे दिन 6 घंटा बारी आई बारी पूरी पानी ढोलने में खत्म होगी
0: कहीं फायदा मिले
1: कहीं फायदा मिले पानी ढोल दियो पूरे दिन दड़ो कितो पानी उपाद रू है। सीधा करना चाहे खेत यहाँ खेत सीधा थोड़ा ही है पानी पानी खराब हुई नी
0: पानी बचत कौन करे
1: बचत कण करी मां
0: फालतू पानी खत्म कर
1: फालतू पानी घड़ो खत्म कर रिया लोग एडा लोग घना है
0: तो जैन थे गांव में चौपाल पर बैठो भैया हाँ। की कोई बोला दे ओके भैया
1: घनी देवा और मैं तो कहवा भाई कोई मानो देने तो बात है यार ध्यान रखो और नहीं मानो देने थारी इंचा है आप रे मन मर्जी हूँ जहाँ देड़ो जड़ी सेवा है जड़ी मेवा है। मैं तो कहवा ज्यादा भाई बे फालतू पानी जहाँ आगे बडेरा कियो भाई भगवान ही पानी रोई ले को ले लेवे को लेवे बेफालतू डोलियों पानी रोई ले को मिले देनो पड़े भगवान नहीं। तो मैं तो आ कहवा हाँ बेफालतू पानी मत डोलो कई हमारे ही पड़ोसी है जगह गणे धोरा मत पाइप लगे उड़ा है हाँ पानी ढोले 6 घंटा नो उठा कोई 10 घंटा उठा हाँ ढुकुड़ा है बे।
0: सही आगे आप हम बात करा जैन बोसिंह जी जगह भी आप जैविक उत्पाद तैयार करो तो जैन अपन कृषि एहलकार आए आपने कभी कोई बताएगी मारे में अपन हिसाब खेती में करने से ताकि जैविक खेती जैसे सरकार भी बढ़ाव दे रही है
1: हाँ।
0: तो बेबी थान टाइम टाइम जानकारी देव तो ला
1: जानकारी तो फोन माते तो देवे ही है
0: अब जैन अपन जैन आप रेडियो भी सुनता होला
1: एक दो बार माने राकेश दीदी के भाई जैविक खेती करो खाउने पीऊने मूंगफली सब धान हुई जो बढ़िया हुई तो मैं भी बात मानी मुझा बढ़िया हुआ
0: रेडियो में भी जैन मैं बार बार थान चेता हूँ की अपन जैविक खेती करने रेडियो भी सुनता होला
1: रेडियो सुना ना रेडियो मैं रोज सुनता हूँ रेडियो तो मैंने कई साल हो गया सुनते पर रेडियो सुना रेडियो में जैविकरी घनी जानकारी आवे पर अब लोग दुनिया का ही है ज्यादा कर दुनिया मान नहीं रही
0: सही है
1: और माने वो तो भाई देखो हाँ भाई मान ही जो तो
0: भवन सिंह जी जन चालता चालता अपन भयान थे कहीं इनकी सीख देनी चाहो इनको कहीं गुरु मंत्र देने चाहो थाने भी कोई गुरु मंत्र दियो हम भी भयान कोई इनकी बात गुरु मंत्र दो ताकि अपन की जगह बात सुने बांग की पल्ले पड़े और बांग को भी सुधार हुए और अपन देश को भी और अपन जगह खाऊन वाले अपन भाई धरती पर रहो ना जितनी भी जातियां हाँ मनुष्य जाति है चाहे कौन सी भी प्राणी कौन सी भी प्राणी है अपन सबने अन्न और वो तो जरूरी है पानी और अन्न का पुतला अपन अन्न सब चीजें जरूरी तो अपन सबने भी जरूरी है कि भाई अपन चौकी चीज खावा ताकि चौकी चीज जी मत अपन बीमारियां भी कमाए तो आप कहीं सीख देनी चाहो
1: मैं सीखा देनी चाहवा सभी किसान भैया ने हाथ जोड़ निवेदन है जैविक खेती करो और यूरिया डीएपी बंद करो और सरकारी बढ़ावा दे रही है यूरिया डीएपी में आपरे या तो आर्टरी बीमारी है या दोरो है या कैंसर है या शुगर है या 1000% बन जाओ और जैविक खेती करोगे तो आप एक बीमारी का परसेंट नहीं बनोगे। साथी ठोक के कहता हूँ हमने 44 साल ले लिया और सिर दर्द की एक टेबलेट नहीं ली है अभी तक। हम लोग हरी तो सब्जी खाते हैं खेत की और कभी ये मोल लाके सब्जी नहीं खाते हैं। हम तो घर का ही तो अनाज खाते हैं और घर की सब्जी खाते हैं कोमिटिया है सांगरी है कैर है फली है काचर है एडी सब्जियां खाओ बाकी गोभियां आलू सब बंद करो। बीमारी है कोरी बीमारी है आप नहीं मानो तो बीकानेर उलोड़े वाड़े जार देख लीजिए, एक गंदो नालो चल रहा है, सब्जियां बन रही है, लोग ला रिया गाड़ियां भर भर खा रिया है।
0: वाह वाह भवन सिंह जी, आप बढ़िया विचार व्यक्त करिए, आप भैया ने बताया बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करी।
1: हाँ।
0: उम्मीद करा गे भैया
1: ने, भैया ने आई कहनी चाहू सा सभी जैविक खेती करो और अच्छी चीज खाओ, जैविक में अच्छी मजबूती है, जैविक में मजबूती है, यूरिया डीएपी में मजबूती कभी नहीं आएगी, हार आएगी।
0: वाह साहब भवन सिंह जी, आप चौपाल पर पधारे, भैया ने अति बढ़िया जानकारी दी, आपको घणो घणो धन्यवाद। राम राम सा,
1: राम राम सा, आप घणो घणो धन्यवाद, राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जैविक खेती द्वारा अच्छी उपज के साथ भूमि संरक्षण विषय पर सहदेव बांगड़ा की श्री भंवर सिंह से बातचीत। आइए अब सुनते हैं ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये गजल। हम आकाशवाणी नागौर के छिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में ऑनलाइन रेडियो लाइव के जरिए भी सुन रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप सुन सकते हैं। इस समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म क्रोधी के इस गीत से। गीत को आवाज़ दिया लता मंगेशकर और उनका साथ दे रही हैं सुरेश वाडेकर।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, इस फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। आवाज दी है किशोर कुमार ने।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: गाने पुराने जमाने के, ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म मेरा साया से। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। इस कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी से। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार ने।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए सुन रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी आप हमें प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुन रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने नए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बदलापुर से। गीत को आवाज़ दी है आतिफ असलम ने।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, रॉय फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। इस गीत को आवाज दिए अरिजीत सिंह और उनका साथ दे रही हैं अदिति सिंह शर्मा।

आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने ने तराने ने। दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म कपूर एंड सन्स से। इस गीत को आवाज़ दी है बादशाह फाजिल पुरिया और उनका साथ दे रही हैं सुरती कक्कड़ और नेहा कक्कड़।

दोस्तों गाने नए जमाने के, ये गाने नए तराने नए, इस कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म बेफिक्रे से। इस गीत को आवाज़ दी अरिजीत सिंह ने।

मुबारका कार्यक्रम का अगला गीत इसी फिल्म से सुनते हैं। इस गीत को आवाज़ दिए मिका सिंह और उनका साथ दे रही हैं प्रकृति कक्कड़।

दोस्तों कार्यक्रम गाने ने त्राने ने इस कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म दिलवाले से। इस गीत को आवाज दी है अरिजीत सिंह और उनका साथ दे रही हैं अंतरा मित्रा।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने ने तराने ने। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 11 बजे हैं। प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से अनुप्रसारित होगा।
1: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
3: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027, बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

हाल क्या है दिलों का, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। अनोखी अदा, ये था फिल्म का नाम।

जगजीत सिंह की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे। राजेश रेड्डी ने इसे लिखा था, संगीत दिया था जगजीत सिंह ने, और आईना ये था एल्बम का नाम।

0: लकी अली को अभी आप सुन रहे थे अक्स एल्बम से। ये गीत लिखा लकी अली ने, और अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और लीजिए सुनिए अब ये गीत बरसात की रात फिल्म से।

बरसात की रात से कवाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रोशन का संगीत था।

तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर, कहां जाऊं तेरा पता भी तो नहीं।

0: दीवाना एल्बम से आप सुन रहे थे सोनू निगम को। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा था और साजिद वाजिद का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

आलिशाज लव नोट, ये एल्बम से आप अभी ये गीतकार गीत सुन रहे थे। आलिशा की आवाज में और साथ दिया था बाबुल सुप्रियो ने, संदीप चौटा ने संगीत दिया, नितिन रायकवार ने इसे लिखा।

शान और कविता कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे थे। इस गीत में दिल चाहता है फिल्म का नाम था। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: तलत अजीज की आवाज में ये रचना अभी आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा, असद अली का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये रंग तरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: रंग

0: यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं

0: और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार सातवीं भागीदारी है।
1: जी सात देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि जी सात देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

विजय और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। डिस्को डांसर फिल्म का नाम था अनजान ने, से लिखा बप्पी लहरी का संगीत था। और आज इस प्रोग्राम में यादों की महफिल में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माए गीत, उनकी फिल्मों से गीत। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: गुलामी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, गुलजार ने इसे लिखा था। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फूल और अंगार फिल्म का नाम था। रानी मलिक ने इसे लिखा और अनु मलिक का संगीत।

फिल्म गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुदेश भोसले की आवाज में, कुमार ने इसे लिखा था और अमर मोहिते का संगीत था। आप सुन रहे हैं इस वक्त यादों की महफिल विविध भारती से।

बैनी दयाल, श्रेया घोषाल, ए आर रहमान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे युवराज फिल्म से, माफ कीजिए, श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और ए आर रहमान का संगीत था।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, प्यार झुकता नहीं फिल्म का नाम। एसएच बिहारी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

फिल्म गुरु से ये गीत अभी आप सुन रहे थे ए आर रहमान और चिन्मयी की आवाजों में गुलजार ने इसे लिखा। ए आर रहमान का संगीत था। आज यादों की महफिल में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत हमने आपको सुनवाए। इसके साथ ही ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित किया जा रहा था। हम आपको बता दें कि ये प्रसारण आप उन्हें सुन पाएंगे दिन में 1:05 से। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में कहीं पर भी ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए सुन रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी आप हमें प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुन सकते हैं। इस समय दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र में सक्रिय और समावेशी भागीदारी आवश्यक है।
1: आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े, अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे, दृष्टिकोण रखे और किस तरीके से सकारात्मक योगदान भारत के युवाओं का हो सकता है, भागीदारी हो सकती है, इसके लिए ये युवा संसद विशेष रूप से नई दिशा, नया दृष्टिकोण देगी।
0: 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही टेलीग्राम को 30 जून तक पहले से पोस्ट किए गए पुराने संदेशों को एडिट करने की सुविधा भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। एनटीए के अनुसार यह कदम परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के झूठे दावे गढ़ने और अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए उठाया गया है। एजेंसी ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा है कि इन उपायों से छात्रों के व्यापक हित में परीक्षा का सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू हुआ। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय और उपचार, स्वच्छता, पीने का साफ पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान की थीम स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार रखी गई है। इसके अनुसार सभी जिलों में गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। बालोतरा जिले के पाटोदी गांव के पास आज एक सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ये हादसा कार के रोडवेज बस से टकरा जाने से हुआ। ये सभी लोग भाई थे और कोडुका गांव से मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। वहीं एक अन्य हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक महिला घायल हो गई। ये दुर्घटना पाली जोधपुर हाईवे पर मंडिया बाईपास पर हुई, जब एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। ये सभी लोग जोधपुर से सिरोही जा रहे थे। उदयपुर के कोटड़ा में सेई बांध टनल के विस्तार का 95% काम हो गया है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कल कार्यस्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को 15 जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमावत ने बताया कि इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। टनल की चौड़ाई बढ़ने से इसकी जल निकासी क्षमता 328 से बढ़कर 1376 क्यूसेक हो जाएगी। इससे मॉनसून के दौरान सेई बांध का पानी बेकार बहकर गुजरात नहीं जाएगा और जवाई बांध अब 50 की जगह केवल 22 दिन में भर सकेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून बारिश और आंधी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज और 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच आज भरतपुर में आंधी बारिश की गतिविधियों से मौसम सुहावना हो गया। वहीं किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जयपुर सहित कल कई जिलों में तेज आंधी के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में ओले भी गिरे। चूरू के सरदार शहर में तेज अंधड़ से दिन में ही अंधेरा छा गया। तापमान में आए इस बदलाव से कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से नीचे आ गया है। हालांकि फलौदी 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आंधी बारिश का ये दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दिन का 1:05 हुआ है।

0: ये वापस चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की तरफ।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

एक अजनबी हसीना से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अजनबी फिल्म का नाम था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज थी। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और ये एक ऐसा गाना है जो हर किसी ने लिखा, यानी कि बहुत पॉपुलर, इसीलिए शुरुआत इसी गाने के साथ की गई क्योंकि आपकी जो फरमाइश है सर आंखों पर, और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस। एक चीज मैं देख रही हूँ कि हमारी जो इबारत है उससे भी काफी मॉडिफिकेशन करके या उससे इंस्पायर होके बहुत सारे इबारत लिखी गई है, कविता लिखी गई है, कुछ पंक्तियां लिखी गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। हमारे श्रोतागण एक दूसरे को नमस्कार करते हैं और साथ ही बोलते हैं कि सुरीला सफर कारवा के हम सफर साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। साथ ही इन्होंने लिखा है कि प्रेम प्रसंगों की श्रृंखला के इबारतों में आज भी दिल के किसी कोने में छुपी शून्यता को प्रेम की मीठी एहसासों से पूर्ण करने की खूबसूरत कोशिश की गई है। सच है, उम्र की सीमा बंधन को दरकिनार कर दिल जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अनायास ही मोहब्बत की दस्तक दे जाता है। कितनी खूबसूरत बात कही है। हमारे एक और श्रोता है, वो लिख रहे हैं, मुस्कुरा उठे हैं और कह रहे हैं कि हम तो उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां अजनबी हसीना तो क्या, अपनी हसीना भी भाव नहीं देती। अगर चाय मांगो तो जवाब नहीं मिलता, खुद से बना लो। ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी नोक झोंक भी तो जिंदगी में रंग भरती है, ये भी अलग तरह का रंग है। बिल्कुल। साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो वीरान राहों को गुलजार बना देता है वो है मोहब्बत का रंग, और साधारण दिनों को खास बना देता है वो है मोहब्बत का रंग। जब प्रेम दिल में घर कर ले

लिखता है तो खतों के पन्नों पर शब्द नहीं, भावनाएं उतरती है। यादों के रंग इतने गहरे होते हैं कि हर पन्ना एक नई तस्वीर बन जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक प्रेमी जब प्रेमिका से मिलता है तो एक इत्तेफाक ही होता है, क्योंकि नजर में तो बहुत आते हैं। अब जो नजरों को भा जाए, बस मोहब्बत वहीं पर कबूल कर ली जाती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मोहब्बत ना हो तो फिर जिंदगी के रंग फीके लगने लगते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आप तो हमसे सवाल काफी पूछती हैं, हालांकि हमने अभी सवाल पूछना शुरू नहीं किया आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज की इबारत में सबसे अच्छा शब्द हमें क्या लगता है, तो वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल ये गीत।

फिल्म कन्यादान से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, और नीरज ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। साथ ही खतों की बात हुई, पत्रों की बात हुई इस गीत में, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने पत्र लिखने की जो आदत है उसे रखी है या नहीं रखी है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल हो गया है हर तरफ, तो वहां पर टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पुराने जमाने की खुशबू, वो खत लिखना, वो पत्र भेजना, क्या अभी तक भी ऐसा होता है? तो चलिए आप मुझे बताइए कि पिछली बार आपने खत, पत्र या एक प्यारा सा जन्मदिन पर या किसी ऐसे मौके पर किसी को प्यारा से अपने हाथ से लिखा खत, कुछ पंक्तियां कब लिखी? मोबाइल पर नहीं, एसएमएस पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, लेकिन आपने एक डायरी पर किसी को लिखकर कब पत्र दिया और क्या लिखा? वो लिखना अपने आप के लिए भी हो सकता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम वो भावना है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति या ईश्वर के प्रति स्नेह, समर्पण, विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ अपनापन होता है। प्रेम में स्वार्थ कम और दूसरे के सुख की चिंता अधिक होती है। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे 12 गीतों की लिखी हुई इबारत में तीसरे नंबर का लिखा हुआ गीत अभी अभी हमने शामिल किया कन्यादान फिल्म से। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि देखते हैं कि कौन सी लिस्ट जो है हमारी पूरी होती है गीतों की, उन्होंने एक लिस्ट बना ली, तो वो तो जरूर देखते हैं कि मेल खाती है कि नहीं खाती, लेकिन साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि आपने पिछली बार किसे प्यार भरी पाती लिखी है। साथ ही साथ ये जो अगला गीत अभी आप सुनेंगे, उस गीत को कौन से फिल्म से लिया गया है और उसमें कौन अभिनेता और अभिनेत्री है जिस पर ये गीत फिल्माया गया है, मुझे जल्दी से लिख भेजिए। मैं इंतजार कर रही हूँ आपका मैसेजेस पर।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे और बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत सारे श्रोताओं ने कि स्वयंवर फिल्म से इस गीत को लिखा लिया गया है और शशि कपूर मौसमी चैटर्जी पर फिल्माया ये गीत बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे सही जवाब मिले हमें इसके लिए। साथ ही साथ खतों की बात जहां चल रही है वहां पर भी बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले हैं। पोस्टकार्ड अंतर्देशीय पर पत्र पर नहीं लेकिन व्हाट्सएप पर अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो खत के रूप में ही उसे लिख देती हूँ, वो भी पढ़कर समझकर वैसे ही लिख देते हैं, फुर्सत नहीं है बात करने की तो मुझे यही अच्छा लगता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हमारी सगाई से पहले और सगाई के बाद के यादगार पलों पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सगाई से पहले मेरी होने वाली धर्मपत्नी मेरे लिए अजनबी हसीना ही तो थी जो वास्तव में मेरे दिल के वीरान राहों पर सपनों की रानी बनकर खिल जाती है। अरे वाह, आपने हमारी इबारत का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को चुनकर बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचाया है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि डिजिटल दौर में जहां संदेश एक पल में पहुंच जाते हैं वहां खत लिखने का सुख कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन आज जब मैंने विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम के लिए अपने हाथों से खत लिखा तो लगा जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। कागज पर उतरते शब्दों के साथ पुरानी यादें भी लौट आई, वो डाकिये का इंतजार, लिफाफे की खुशबू और अपनेपन से भरे अक्षर। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ इस तरह रही कि कभी प्यार में खत लिखने और पैगाम भेजने का समय नहीं मिला। शादी हो गई, श्रीमती जी बन गई और अब उस मुकाम पर है उम्र के कि इसकी नौबत ही नहीं आ रही है। क्या जमाना था, खत के इंतजार में दिन गंवाते थे और आज कुछ सेकंड में खत मोबाइल पर आ जाता है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में सबसे खूबसूरत शब्द उन्हें खुशबू लगता है, ये पहले प्यार की खुशबू। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हमारी वाली हसीना तो कहती है चाय बना रहे हो तो हमें भी पिला देना। क्या बात है, क्या बात है। ये प्यार, मिठास, नोकझोंक, यही तो जिंदगी का फलसफा है और यही जिंदगी में रंग भरता है। चलिए हमारे गीतों की लिस्ट पर पहुंचते हैं। जो अगला गीत अभी आपको सुनवाने जा रही हूं वो है कभी कभी फिल्म से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब सवाल ये है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रोफेशन क्या होता है, वो काम क्या करते हैं, ये आपको हमें बताना है। इस फिल्म में जो कैरेक्टर, जो किरदार वो निभा रहे हैं, वो काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है, वो हमें बताइए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर। और इस संदेश से पहले जो गीत अभी आपने सुना वो कभी कभी फिल्म से था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत था। और इसके बारे में हमने एक सवाल आपसे पूछा था, सवाल याद है ना? सवाल ये था कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जो इस फिल्म में जिस किरदार में हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं। तो हम तक कुछ मैसेजेस पहुंचे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कवि शायर का काम करते हैं, वो शायर हैं, लिखते हैं, लेखक हैं। और साथ ही एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि प्रोफेशन तो याद नहीं है लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है तो सुनने में ध्यान है। एक और श्रोता हमारे जवाब देते हैं इस सवाल का कि अमिताभ बच्चन कवि थे और शशि कपूर एक अमीर व्यापारी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन एक शायर होते हैं जो शायरी कविताएं लिखते हैं, बाद में वो दूसरे कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं और ऋषि कपूर साहब बाद में उन्हीं के कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं। क्या ये सही है? थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन आधा कह सकते हैं कतरा कतरा सही है और कतरा कतरा पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस बारे में और आपके संदेशों का इंतजार रहेगा कि दरअसल उन दोनों का प्रोफेशन इस फिल्म में क्या है, मुझे लिख भेजिए। साथ ही एक और श्रोता है जो हमें लिखते हैं कि खत लिखना जिसमें वो जज्बात, वो प्यार इजहार आजकल के फोन या सामने कहे जाने से नहीं आते हैं। एक एक शब्द पढ़ने से जो सिहरन, जो रोमांच होता है वो कहीं भी नहीं मिलता। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वैसे तो जिन गीतों को नहीं सोचा था वो अगर बजने लग जाएं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बिल्कुल सही बात। तो आप मुझे लिख भेजिए कभी कभी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के किरदारों का क्या प्रोफेशन है, क्या काम वो करते हैं उस फिल्म में। और साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत यादों की बारात से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी। तो व्यवसाय पर, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के व्यवसाय पर बहुत सारी बातें आई हैं यहाँ पर, बहुत सारे संदेश आए हैं कि उनका क्या प्रोफेशन था, वो क्या काम करते थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मैं अमिताभ व्यवसायी हैं और शशि कपूर सिविल इंजीनियर। एक और श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन उसमें शायर और लेखक बने हैं और शशि कपूर आर्किटेक्ट बने हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन एक कवि के रूप में होते हैं, बाद में वो अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं, कोयले की खदान का काम संभालते हैं और वहीं शशि कपूर इंजीनियर या आर्किटेक्ट होते हैं। अभी भी पूरा जवाब नहीं मिल पाया है, मेरे ख्याल से और मैसेजेस आने देते हैं इस बारे में, क्योंकि ये बड़ा रोचक होता जा रहा है। जी हाँ, पहले वो शायर होते हैं लेकिन बाद में अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं और सिविल इंजीनियर का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो शशि कपूर होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं, यानी कि वो नक्शे बनाते हैं मकानों के ताकि वो घर बन सके, और अमिताभ बच्चन सिविल इंजीनियर का काम करते हैं जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि उन नक्शों के अनुसार बिल्डिंग, घर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएं, ऐसा ही कुछ। पत्रों की बात चली थी तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब वे पाठशाला में पढ़ते थे तब खत लिखने का बड़ा शौक था, सभी रिश्तेदारों को खूबसूरत खत लिखा करते थे। बाद में उन्होंने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए वो, और वहाँ उनकी एक टीचर से दोस्ती हो गई, और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा ये मैसेज है, वहाँ पर भी वो खूबसूरत खत लिखते थे। तो ये जो खत लिखने का सिलसिला है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रेरणादायक बातें भी लिखते थे, तो ऐसा उनका खतों का सिलसिला चलता रहा। उनके खत आज भी इनके लिए यादगार विरासत की तरह है।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत बसेरा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे हैं पर अब नहीं लिखते, और काफी दिनों के बाद अभी 15 दिन पहले ही मनचाहे गीत के लिए विविध भारती में पत्र लिखा, अभी तक शामिल नहीं हुआ।

हो गया है और अब तो वक्त अलग है, लेकिन उस वक्त 160 रुपए में फिल्म देखी थी, 160 रुपए का टिकट आया था, इतने सस्ते में उन्होंने ये फिल्म देखी थी। जी हाँ, वक्त बदलता है बहुत कुछ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्म पत्नी ने उन्हें कॉल किया है ऑफिस में और कहा है कि ये आप जो मैसेजेस लिख रहे हैं, संदेश लिख रहे हैं, वो मुझ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, फैमिली मेंबर्स की तरह बन गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब परिवार के सभी सदस्य इस प्रोग्राम को, विविध भारती को सुनते हैं। जी हाँ, फिलहाल आते हमारे अगले सवाल पर। गीत तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अभी जो गीत आपने सुना बसेरा फिल्म से, जहां पर सवेरा हो बसेरा वही है। बसेरा मतलब घर, लेकिन इसका अगर दूसरा मतलब देखा जाए तो जहां आपको सुकून मिलता है, जहां आपका दिल आनंदित हो जाता है और मन बसता हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका मन बसता है? जरूरी नहीं कि वो घर ही हो सकता है, कोई जगह, कोई ऐसी जगह जहां आप जाकर एकदम आनंदित हो जाते हो, या आपको वो सुकून मिलता हो, या कोई ऐसी जगह जहां आप घूम कर आए हो, या कोई पुरानी याद, जहां पर भी आपको लगता है कि वो आपका बसेरा है, मुझे लिख भेजिए। इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल ये अगला गीत इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।

0: मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में दो रास्ते फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत लिखने का वो जमाना बड़ा ही खूबसूरत था। किसी के खत का इंतजार ऐसा होता था जैसे कि किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करता हो। वो मनचाहा खत मिलने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, मानो हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली हो। काश वो खत लिखने का जमाना दोबारा लौट आए। फिलहाल आप अपने लिए खत लिख सकते हैं, अपने जो करीबी हैं उनके लिए लिख सकते हैं, और विविध भारती तो है ही आपके खतों के इंतजार में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी खत कब लिखा ये याद नहीं, लेकिन बहुत सालों पहले पिताजी को खत लिखा था और अभी तक संभाल के रखा है, और पत्नी को लिखे सारे पत्र भी पिछले कई कई सालों से उन्होंने सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जब भी वो कोरे कागज पर स्याही बिखेरती हैं तो उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक ठहराव महसूस होता है। खत लिखते समय भागती हुई दुनिया जैसे रुक जाती है। हर एक शब्द को चुनना और उसे कागज पर उतारना एक ध्यान की तरह महसूस होता है। अपनी उंगलियों से पेन को पकड़कर कागज पर दबाना अंदर के उमड़ते हुए जज्बात को एक आकार देता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि 11-12 गीतों की लिखी हुई इबारत में से पांचवे नंबर पर ये जो गीत है रेशमी जुल्फें, ये शामिल हुआ है, इन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि लाखों पुराने रखे हुए खतों की दराज जब भी खुलती है तो उनकी पीली पड़ चुकी रंगत और खुशबू पुराने दौर में ले जाती है। उन्हें दोबारा पढ़ना बीते वक्त के किसी अजीज शख्स को दोबारा से गले मिलने जैसा लगता है, किसी खास व्यक्ति के गले मिलने जैसा लगता है उन्हें। हाँ जी, बिल्कुल। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान पशु पक्षी के रात्रि को आराम के रहने के स्थान को बसेरा कहते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल की झील के किनारे बसेरा है उनका, जहां उनकी सारी यादें ताजा होती है।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

येसुदास को आप सुन रहे थे। इस गीत में छोटी सी बात फिल्म का नाम है और साथ ही दिया था आशा भोसले ने इस गीत में। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारा बसेरा बताया है कि जहां जहां उन्हें अच्छा लगता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जहां पूरे परिवार को एक साथ एक दिल से आत्मिक संतोष और शांति मिलती है वहीं पर बसेरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि खत के नाम पर बहुत से वाक्य याद आ रहे हैं पर क्या लिखें और क्या ना लिखें। जी हाँ, फिलहाल इजाजत चाहेंगे आपसे इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा, जिसने आज इस सफर में आपका साथ दिया। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप बने रहें विविध भारती के संग।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं जल और जल प्रदूषण पर। दोस्तों, विकास और तकनीक के इस युग में औद्योगिकीकरण बढ़ा है और शहरीकरण भी खूब हुआ है। वाहनों की तादाद खूब बढ़ी है जिससे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। जंगलों पेड़ों की कटाई चरम पर है। पेड़ों की कटाई के वक्त शायद हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि एक दिन काटे गए ये वृक्ष हमसे बदला लेंगे। इनकी कटाई से धरती माँ रुष्ट होंगी और अब धरती का कोप हम लगातार देख रहे हैं। चलिए इस बरस थोड़ी कोशिश करें इन बातों को नियमित रूप से अमल करने की।

दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में पानी की कमी हो रही है और साथ ही जल प्रदूषण का खतरा भी सर उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया था, जिसके तहत सभी देशों को जल आपूर्ति हो सके इसका प्रयास किया गया। खेती में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब तो बहुत सारे देशों और प्रांतों में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जिससे कम जल में ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इन सब बातों के मूल में है, जल यानी पानी कीमती है, ये घट रहा है, इसे बचाएं, पानी की हिफाजत करें।

दोस्तों, झीलों, नदियों और समुद्र के पानी लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। जल प्रदूषण जल में रहने वाले जीवों, पादपों और संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी है। जल प्रदूषण के कारण क्या हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। नदियों में जानवरों या इंसानों की मृत काया को यूं ही प्रवाहित कर देना, इसके अलावा औद्योगिक कचरा को नदियों, जलाशयों में फेंक देना, इससे बहुत बड़े स्तर पर जल प्रदूषण होता है। ये प्रदूषित जल हमारे घरों में रिसाइकल के बाद पीने के काम आता है। प्रदूषित जल पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
2: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
2: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले डिजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और यूपीआई जैसे जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है, मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें एआई को जोड़ देती हैं, तो भारत का डीपीआई बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो एआई मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
4: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
6: UNSC reform would be grossly inadequate.
7: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ

0: कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और एसटी बर्मन की तर्ज थी।

0: ये नजर लौट कर फिर आएगी। आप सुन रहे थे आशा भोसले को। इस गीत में मेरे सनम फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से

0: रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गंगा की लहरें, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: हसरत जयपुरी ने इसे लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, आपको सुनवा रहे हैं गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, आई मिलन की बेला फिल्म का नाम है, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: ही सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
0: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होती, देर भी नहीं लगती।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही हैं, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
0: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब उठते हो,
1: और कोशिश करिए
0: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। ठीक है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी आदत होती है वो हमें थोड़ा बदलनी है।
1: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए, एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बॉटल जरूर लेके जाए, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबीयत ना खराब हो।
0: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और ये जो किताबें हैं वो हमारे ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही है, इसके अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
1: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती है, और जितना हम किताबों से जान

0: अच्छा है कि
1: ना
0: हम पढ़े,
1: जी
0: कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़े,
1: बिल्कुल।
0: जीवनी
1: और
0: पढ़े।
1: उस पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा या
0: हाँ
1: क्या आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें,
0: बिल्कुल
1: देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस
1: जी
0: उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो
1: जी
0: चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं।
1: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये आप अगर देखिए मन की जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
0: सबसे बड़ी बात है हमारा मन
1: बिल्कुल
0: कितना सशक्त है। अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
0: मन को
1: बिल्कुल
0: सशक्त बनाते हैं। हमारे
1: हाँ
0: श्रोता बता सकते हैं
1: बिल्कुल,
0: हमारी
1: कि किस तरह से
0: सखिया।
1: अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं
0: और कई बार
1: तो
0: क्या होता है आपके
1: जी
0: घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती हैं पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती हैं कि अरे भाई आज तो पतिदेव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया। तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती
1: बिल्कुल
0: हैं, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
1: बिल्कुल। और आज हम मुहावरों के दिनों में बात करेंगे, दूर के ढोल
0: आ
1: सुहावने
0: हा हा हा ये तो
1: कि
0: होता है।
1: अक्सर होता है ना हम लोगों की दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है या कितना अच्छा काम
0: इसके
1: कर रहा
0: मजे
1: है। हाँ
0: हैं।
1: लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि
0: बिल्कुल
1: किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
0: बिल्कुल, उसकी
1: तो
0: जिंदगी में क्या
1: बिल्कुल
0: क्या घटा, कैसे घटा, उसने
1: जी
0: कैसे उसका मुकाबला किया, इन सब
1: जी
0: बातों को नहीं जानते हम। केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
1: जी तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे।
0: ये भी
1: और
0: बताएं कि इनकी जिंदगी में
1: हाँ
0: दूर के
1: ये
0: ढोल
1: किस
0: सुहावने
1: तरीके से
0: हुए
1: चीज
0: क्या।
1: को समझते हैं अपना नजरिया बताएं। और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत, आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात
0: अरे
1: करेंगे
0: वाह क्या बात है।
1: जो है डिजाइनर पीपल की संस्थापक, और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना
0: हाँ हाँ बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है हर समय।
1: जबकि विषय जो है ना वो हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है
0: आपने कंट्रास्ट कर दिया है,
1: जी
0: बातें हल्की
1: क्योंकि
0: फुल्की
1: इस
0: कही
1: विषय
0: है
1: पे अक्सर
0: और विषय
1: तकरार
0: रखा है
1: हो जाती है।
0: घरेलू बजट। बाप रे
1: जिसपे अक्सर तकरार हो जाती है
0: हाँ ये तो
1: पूरे घर में,
0: बड़ा
1: मतलब एक राय कोई नहीं हो पाता इस विषय पे
0: बिल्कुल सही कहा। इसके लिए जो पता है जो गृहिणियां है ना
1: जी
0: वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती हैं।
1: बिल्कुल। और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे।
0: ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखे और अभी हम सुन लेते हैं गीत।
1: गीत जी।

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी।
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं, जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: बिल्कुल।
1: जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है, तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल। ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज ही के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी IFAD ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं, वो अपने परिवारों को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना।
0: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक

0: बेहतर भविष्य की कामना है। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए
1: बिल्कुल
0: हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल
0: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे, तो कितनी कितनी खुशी
1: बिल्कुल
0: होती
1: खुशी होती
0: थी।
1: है कि ना कि अब चलो ये जरूरतें हमारी जो थी
0: हाँ,
1: सब ये
0: हम
1: पूरी हो
0: पूरी कर
1: जाएगी।
0: लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो कितने उन लोगों को उसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
0: बिल्कुल।
1: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: बताइए।
1: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि

0: सामने आ जाती हैं, उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती है, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी
1: आएंगी
0: ही।
1: ही
0: आप ये
1: बिल्कुल
0: नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है, या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है ना,
1: हाँ
0: या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, अब कोई जरूरी
1: बिल्कुल
0: नहीं है आपको पता
1: बिल्कुल
0: हो उस चीज के ऊपर
1: हाँ,
0: के बारे
1: आपने
0: में।
1: उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना,
0: बिल्कुल
1: आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से
0: जी
1: हंसना बोलना, और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन
0: बिल्कुल
1: उसके पीछे का जो संघर्ष है,
0: जी
1: पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां हैं, वो हम
0: जी
1: नहीं जान पाते हैं।
0: बिल्कुल। इसी को लेकर छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे। लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौवा। वो
1: बिल्कुल
0: जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी।

0: हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है, क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि फिर और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
1: तो उसका फायदा उठाया
0: बस
1: जाता
0: उसका
1: है।
0: फायदा
1: इसलिए
0: उठाया
1: लोग
0: जाता है।
1: कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी
0: बिल्कुल
1: को, इसीलिए कहते
0: तो
1: हैं।
0: इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए,
1: बिल्कुल सही
0: उसका
1: कहा
0: सामना
1: आपने,
0: करिए डट के,
1: बिल्कुल
0: तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती, कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी
0: बिल्कुल
1: कोशिश क्यों न करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए, क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो
0: बिल्कुल
1: आप दो टूक बात करें,
0: जी
1: जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहें।
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश मत
1: अपनी
0: करिए।
1: सफाई देना
0: हाँ
1: कोई
0: बस
1: जरूरी
0: उसको वही
1: नहीं है।
0: सफाई मत दीजिए ज्यादा अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं हैं तो सीधे ना कहना जरूरी है, उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उस लिए है ना, तो सिर्फ ना कहना काफी है। ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी
1: नहीं
0: चाहिए।
1: देनी चाहिए, होता क्या है हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं,
0: हाँ
1: वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है या हमारे
1: बिल्कुल
0: अंदर जो जो समुद्र जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही है ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती
1: शांत
0: है।
1: हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता, जब
0: जी
1: आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पड़ा है इन बातों में।
0: बिल्कुल
1: और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं,
0: निकली
1: क्योंकि उस
0: जी
1: वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो हैं घूम रही होती हैं
0: जी
1: और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर सहित होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों

0: वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
1: बिल्कुल सही कहा
0: क्योंकि
1: आपने।
0: ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्व से धीरे और जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
0: जी।
1: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए, तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं
0: कि आपने इंतजार किया,
1: आपने हमारा इंतजार किया, है ना।
0: एक थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज के सामने,
1: है ना।
0: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
1: 10 लोगों के पास मत जाइए,
0: है ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना। कहते ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
1: और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जा जाकर पूछते हैं, है ना,
0: हम सही हैं, हम सही हैं। अगर आप सही हैं तो
1: आप सही हैं,
0: बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने अपने आपसे निर्णय लीजिए।
1: बिल्कुल आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना, कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो
0: बहुत जरूरी है,
1: हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा हम भावुकता में बह जाते हैं, तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं।
0: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते हैं
1: तब उनके छोड़ते हैं,
0: तब उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं,
1: ये आपको ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जब तक हाँ भरी तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना, आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाइए,
0: और इसके लिए जरूरी हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: और बाद में हमें उसका पछतावा भी होता है। लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इस बात का हमें ध्यान रखे बोलना
1: समझ
0: चाहिए,
1: के बोले, तोल मोल के बोले। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में लगा पाते और अपना समझ कर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में आपको पछतावा दे।
0: बिल्कुल।
1: और हम सबकी आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ, ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में आ जाती है।
0: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि मैं अभी आपकी तारीफ करूं और उस किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
1: क्योंकि
0: ये चाटुकारिता में आता है,
1: ये चाटुकारिता में आता है। और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
0: और अपनी खूबी अपनी खामी हर इंसान को पता होती है।
1: बिल्कुल होती है। और मजबूत मन ही वो जादू है जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है। इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
0: बिल्कुल। और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें कि वो आपकी तारीफ करेंगे,
1: जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ करने वाली है, पर
0: मैं तारीफ करती हूँ लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को, मैं एकदम सही तरीके से आपकी जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ वो करती हूँ।
1: तो मैं आगे उम्मीद रखती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद रखिए, अच्छे से तारीफ।
1: तो चलिए, आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक गीत सुनवा दें।
0: जी।

0: ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी है।
1: हाँ बिल्कुल, और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है।
0: जी, और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
1: बिल्कुल, और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है।
0: जी, और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, पीपीसी सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं कि कितना सुंदर दिख रहा है, वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
1: क्या बात है।
0: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
1: और इसलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और

0: रणनीतिक विकसित की हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है, और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
0: बिल्कुल, उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है, और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक साबित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
1: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती, कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: और बहुत ही अच्छी बात है ये। और महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान, अपनी नई पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
1: बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के, लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है, इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है, दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें हम?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
1: अच्छा, आपको गीत की तलब हो ही गई है। चाय की तरह
0: जी।
2: जरा नजरों से कह दो जी,

0: ऑनलाइन शॉपिंग करते समय
1: जी जी
0: बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
1: बिल्कुल, और फिर वापस करो, ये करो, गुस्सा
0: वो
1: आता है
0: सारी
1: ना उस
0: प्रक्रिया
1: समय,
0: शुरू हो जाती है।
1: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस सच में।
0: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है वो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है वो पास आकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण
1: जी
0: जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोली सुहावने।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया है। और एक और मजे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही ऊबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितने कैसा अजीब अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर
0: बहुत
1: चमकता है।
0: सुंदर लगता है, हम उसकी तुलना करते हैं हरे चेहरे से, चांद की तरह सुंदर चेहरा है ना, चांद जैसा हमारा टुकड़ा।
1: जी जी जी लेकिन जब से वहां पे पहुंचे तब से थोड़ा
0: पता चलता है कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
1: बिल्कुल, तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलिया रलिया
0: रलियामणा।
1: जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत, और रलियामणा मतलब सुहाना, यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो
0: कहा कि पहाड़ों को दूर से जब हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कानफोड़ लगने लगती है। अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
1: बिल्कुल,
0: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
1: वैसे
0: अच्छे
1: सही
0: हैं।
1: है। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती, जैसे हमारे श्रोता जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो, जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस किस तरह से कठिनाइयां और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए लिखे। तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, लेकिन
1: समझा,
0: यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो
1: अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपको निराशा हाथ लगी है, आप बिल्कुल हमसे मिलिए तो हम आपको
0: वैसे
1: और
0: ही
1: बहुत
0: लगेंगे
1: अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे,
0: जैसे हम अभी आपको लग रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में, खास करके पति पत्नी में, इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे जिनके खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और भी पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
0: देखिए, आपका एक श्रोता का हम लोगों ने दो दो बार उनको पढ़ लिया।
1: हाँ।
0: उनको इतना ज्यादा उनका बढ़िया, उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना,
1: बिल्कुल
0: वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है, जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
1: बिल्कुल
0: है ना, और सबको लगता है हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: बिल्कुल,
0: वो हमसे
1: बिल्कुल,
0: हो।
1: हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

आकाशवाणी नागौर के सिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

दोस्तों नमस्कार। सेल्युलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में सेल्युलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चांद हो।
1: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
2: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
3: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
2: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
3: वेरी इजी टू वर्क विथ। गाइड में पहले पहले शुरू शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि एक लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे मगर उस चीज को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह रही मैंने जो कहा वो ही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज कल आज की फिल्म होती तो जरूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाई थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
2: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे,

0: वेदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई, तो दिलीप साहब ने कोई और असिस्टेंट ने पूछा कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शुरू होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है, यहाँ तो ये रूपा जी जो है अंत तक चली है और मिल भी जाती है, इनमें तो कहाँ से। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालते हैं, आप नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ, तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे।
0: किस
1: दिल दिया दर लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि?
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूं होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों, आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है, मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डाल रहा हूँ। तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज। मैंने कहा कब, तो वो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं बहिदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात
0: है। थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर है, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए
1: आदमी का? हाँ, वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
0: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे, वो
1: समथिंग। हाँ,

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही आपकी, जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वॉज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नजर इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए। बड़ी ग्रेट फिल्म, आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे, मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ, साधना बहुत अच्छी थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है, मगर उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो, इसको, इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो, ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊं, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका, अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी। जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं देखिए, लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज्यादा ही वायलेंस पे बेस्ड होती थी, और कहानियां रट्टी पट्टी की कि दो भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है, एक अच्छी नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो, इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है, और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
0: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
1: वो साहब बड़े शर्माते हैं, कि कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की हो बस।
0: वो फिल्में देख रहे हैं आपकी?
1: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आए, तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है, प्यासा में। मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी, मेरी फिल्में देखना। तो बोले टोरंटो में देखी। ओ, मैंने कहा अच्छा, थिएटर में लगी थी प्यासा? तो बोले नहीं, कॉलेज में देखी। मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई? तो कहने लगे वहां के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है। तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही है, और दोनों बच्चे मेरे, कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
0: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया है, और साहब बीबी गुलाम का भी आया है।

0: वेदा जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक
1: थे। बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो ये बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वॉज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
1: बिल्कुल
0: चखा। आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं, उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म, तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे और मेरे खास बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी। उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूं या नहीं तो राजी नहीं है, तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे, अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म, मुझे खुद ताज्जुब होता था कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो वही वैसे हालात में फिल्म बनी और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राज जी, और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू यू नो बहुत, और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने आवारा के सब गाते थे।
0: वेदा जी, इस फिल्म में नौटंकी

0: लिखा है किरदार किया था और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि वाली भूमिका निभा करके, तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
1: हाँ, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट। उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
0: कुछ चीजों ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी, कुछ उसी तरह की वो फिल्म है। उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनाएं।
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।

0: यही सब कुछ चुकाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है।
1: बासु भट्टाचार्य उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको। बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
2: पहले उनको समझना जरा मुश्किल था क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो वो बड़े टेंस रहते थे और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजनी का वहीदा जी ये क्या हो रहा है कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उनसे कहा तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कुछ गलत हो रहा है, तो कहने लगे नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा मैं मानती हूँ मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं बेचारा वो नया है उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी तो हमने कहा वेल ठीक हो गई।
1: वेदा जी आपने सत्यजीत रे साहब की भी किसी फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म थी वो?
2: अभिजान।
1: अभिजान बंगला आपको
2: नहीं, उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है टूटी फूटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
1: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे?
2: हाँ, पाथर पंचली देखी थी।
1: अच्छा।
2: उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड।

0: और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
1: उन्होंने क्या कहा आपके बारे में, उनको कैसा लगा आपका काम?
0: हाँ, उन्होंने कहा, जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्री चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सबने कोरस में कहा है वही रहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइस होता था, ना वक्त जाया होता था ना नेगेटिव जाया। वो तो कहते थे भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है इससे कोई चूड़ियां प्लास्टिक की चूड़ियां भी नहीं बन सकती है, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूं कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
1: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
0: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा, देखिए हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, ये आफ्टर ऑल इज अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे। मगर कई दफा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी, और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर खत्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के, या बहुत कम पैसे जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, तो दे दे, नहीं तो नहीं।
1: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जीरो को।
0: हाँ, वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मजा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
1: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं, तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम?
0: नहीं, आई एग्री विथ हिम, वो आई एग्री विथ हिम, द बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर।
1: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
0: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम, तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे ना वैन्स होते थे, तो हम ज्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो, तो सब एक्टर्स हम साथ में पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियां अपने सीन सुनाया करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा वहीदा जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं, और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को।

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो।
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा ये क्या फर्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अल्लाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, वो उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी, कल्याण जी आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं, कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोरदा भी मान गए हैं तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा, ये क्या बात है ये। नहीं क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुनील ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ। मैंने कहा लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगी, और फिर कल्याण जी भाई आनंद जी भी मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ, मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
0: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावर सब चलता है। तो फिर वो आएंगे। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: का हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है अंदर की जो पीड़ा है वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना है इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है।

0: हो रही थी, क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पे ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है. उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज वेरी कॉमिकल, इट वॉज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे, क्योंकि वो महसूस करी ओ ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है. वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ. तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरे स्टार्टिंग दे दीजिए. अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे. मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूं भूल जाता हूँ तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें. वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यों मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई.
1: वही गाना सुनते रहे।
0: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है.
2: ओ शाम कुछ

0: वहीदा जी, असिस्टेंस आपका जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार
1: पर्सनल? एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं, तो 20 साल बाद नहीं, कोहरा के वक्त शूटिंग खत्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं, मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे, तो जब फिल्म खत्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर के सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना उन्होंने, मुझे नमस्कार किया, और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे, तो उनकी बीवी उनसे बहुत नाराज हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने मत नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंदा ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहां थी नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहां नहीं थी? वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए, तो नहीं मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई तो एक दो महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने गया वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में, हाँ मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने वो फिल्म देखी, तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। ओ रियली? मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मजे की तो बात यह है, मैंने कहा क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम, वो नीचे थे, मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था, तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई, और मुझे पता था कि आप मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं कहा, तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
0: वहीदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया रहा, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे?
1: कोहरा का गाना झूम झूम ढलती रात।

0: वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हट करके भी आप काम कर रही हैं, और खास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघरों जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं म्यूनिसिपल स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूंकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ, इसका नाम है प्रथम। प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील। तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आगे पढ़ाने के लिए हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इम्प्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी ज़रूर पढ़ें, इसके इसका फ़ायदा क्या है।
0: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
1: हाँ जी।
0: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम युववाणी।

नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट डिंपल सिखवाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दलों की धड़कन युववाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे मन को भी स्वस्थ और संतुलित बनाता है, और वो है योग। फ्रेंड्स, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक निष्क्रियता आम समस्याएं बन गई है, और ऐसे समय में योग एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी उपाय के रूप में हमारे सामने आता है। दोस्तों योग केवल व्यायाम ही नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली एक प्राचीन भारतीय पद्धति है। नियमित योग अभ्यास से शरीर लचीला और मजबूत बनता है, इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बेहतर होता है, और कई जीवन शैली संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी इससे सहायता मिलती है। और वहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो योग तनाव को कम करता है, मन को शांत रखने और एकाग्रता बढ़ाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और प्राणायाम और ध्यान जैसे अभ्यास मानसिक शांति प्रदान करते हैं और साथ ही सकारात्मक सोच विकसित करने में भी मदद करते हैं। साथियों, विशेषज्ञों का भी मानना है कि प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट योग करने से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर सकता है, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन और अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम जो है शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी होते हैं। तो आप सभी ये संकल्प जरूर लें कि हम सभी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों युवाणी का सफर यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

तो दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है मंगलवार, और हर मंगलवार और शनिवार हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेशल सेगमेंट, फ़ोन करें गीत सुने। तो हमारे पास जो पहला कॉल है वो है मानासर नागौर से, और फरमाइशकर्ता का नाम है राहुल कुमार नापित। इन्होंने जो गीत पसंद किया है वो है फिल्म राम तेरी गंगा मैले से। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये नगमा।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो दोस्तों, फोन करिए गीत सुने में। हमारे पास अगला कॉल है BR मिर्धा कॉलेज नागौर से, और फरमाइशकर्ता का नाम है अनवर हुसैन। इन्होंने जो गीत पसंद किया है वो है फिल्म इज्जत से। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये नगमा।

तो दोस्तों अगला कॉल हमारे पास आया है अमर सिंह कॉलोनी नागपुर से। फरमाइशकर्ता का नाम है मुकेश शर्मा और इन्होंने जो गीत पसंद किया है वो है फिल्म जख्मी से। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

तो दोस्तों, अगला कॉल हमारे पास आया है जाट कॉलोनी नागौर से। फरमाइशकर्ता का नाम है राम निवास सांगवा। इन्होंने जो गीत पसंद किया है वो है फिल्म दिले नादान से। तो सुनते हैं इनकी पसंद का ये नगमा।

तो दोस्तों अगला कॉल हमारे पास आया है अलाय नागौर से और फरमाइश करता का नाम है अनूप सिंह। इन्होंने जो गीत पसंद किया है वो है फिल्म क्रांति से। तो सुनते हैं इनकी पसंद का ये नगमा।

तो दोस्तों, अगला कॉल हमारे पास है तेलीवाड़ा नागौर से। फरमाइश करता का नाम है पप्पू हलवाई और ईशू भाटी। तो सुनते हैं इनके पसंद का ये नगमा।

दोस्तों, हमारे अन्य फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं चांद मोहम्मद अजमेरी गेट नागौर से, इकबाल खां संदल नागौर से और नंदिनी जोशी सलो चौराहा नागौर से। आप फ़ोन करें, गीत सुने, कार्यक्रम से जुड़े रहिए, आपके गीत फिर शामिल किए जाएंगे।

तो दोस्तों अब घड़ी की टिक टिक करते हुए सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, योग को अपने जीवन में ज़रूर शामिल कीजिए। अब अपने दोस्त डिम्पल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमय चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसे ही सखियों ने याद किया तो आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी राजेश्वरी। जी हाँ श्रोताओं, महिला जगत प्रोग्राम में मेरी प्यारी सखियों का स्वागत है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज की बात के साथ। सखियों, संध्या का समय हो चला है। अभी जो जो मौसम चल रहा है वो थोड़ी सी आंधी भी आई है, और मेरे हिसाब से सारी महिलाएं जो है, मेरी सखियां जो है, किचन में अब शाम के खाने की तैयारी में होंगी। लेकिन ये मौसम ख़राब होने की वजह से उनका खाना बनाना भी थोड़ा डिले हो जाएगा। संध्या का समय हमें दिन भर के मूल्यांकनों का कार्य करना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शाम की शांति मन को सुकून देती है और जीवन में सकारात्मक सोच का संचार करती है। हर शाम यही संदेश देती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। संध्या प्रकृति का सुंदर उपहार है जो हमें विश्राम और आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करता है। शाम का समय सखियों परिवार, मित्रों और अपने प्रियजनों के साथ बिताने का सबसे अच्छा समय होता है। सखियों, आज की बात में हम शामिल कर रहे हैं मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम दिवस, जो आज ही के दिन यानी कल 17 जून को मनाया जाएगा। पूरा देश जो है मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम दिवस को मनाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में मरुस्थलीकरण और सूखे की गंभीर समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। सखियो, मरुस्थलीकरण है क्या? एक्चुअली जब उपजाऊ भूमि अपनी उर्वरता खोकर बंजर या फिर रेगिस्तान जैसी बनने लगे तो उसे मरुस्थलीकरण कह सकते हैं। वहाँ कोई भी अनाज जो है नहीं पनपता है, तो ऐसी स्थिति में वो मरुस्थल हो जाता है। इसका मुख्य कारण है वनों की कटाई और अत्यधिक चराई, जलवायु परिवर्तन और भूमि का अनुचित उपयोग है। सखियों, इस दिवस का जो उद्देश्य है वो है मरुस्थलीकरण और सूखे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना, ताकि जो भूमि मरुस्थल बन चुकी है उसे फिर से वापस उपजाऊ बनाया जा सके। तो हम जो है लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरह से जो है मरुस्थलीकरण को हम रोक सकते हैं। सखियों, भूमि संरक्षण और जल संरक्षण को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। पर्यावरण को बैलेंस में रखना भी इसमें शामिल है। सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में के साथ साथ लोगों को प्रेरित करना भी इसमें शामिल है। हम इस तक जो है मरुस्थलीकरण को किस तरह से रोक सकते हैं, कुछ ऐसे उपाय अपनाकर इसको रोका जा सकता है, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

6-2 पर शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

वहीं आगामी मॉनसून और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। आज जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। गुलाब की खेती और गुलकंद के लिए प्रसिद्ध पुष्कर क्षेत्र के कड़ैल गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में भाग लिया और ग्रामीणों की समस्याएं तथा सुझाव सुने। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर कड़ैल अस्पताल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इसके साथ ही गांव में बस सेवा शुरू करने और बालिका विद्यालय की चार दीवारी निर्माण की घोषणा भी की। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी पुष्कर में आयोजित कांग्रेस पार्टी के 10 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे। शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन की ओर से नारी चौपाल, विशेष पूजा अर्चना, पौधरोपण, प्रदर्शनी और प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। आमजन की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान के उद्देश्य से 12 जून से 15 जुलाई तक जिले में शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न नगरीय निकायों, उपखंडों और वार्डों में आयोजित इन शिविरों में पट्टों का वितरण, पेंशन सत्यापन, जन आधार सत्यापन, मंगला

0: स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न विभागों में चयनित 558 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के पुनः आयोजन की तारीख घोषित की है। ये परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले आयोजित दोनों लिखित परीक्षाओं में भाग लिया था। आयोग ने इसके साथ ही आरएएस 2026 परीक्षा का विज्ञापन भी जारी किया। 607 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 192 राज्य सेवा और 415 अधीनस्थ सेवा के पद शामिल हैं। बीते दिनों जिले में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में जिगजैग पद्धति से पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत फलदार और छायादार पौधे लगाए जा रहे हैं। जनाना अस्पताल में नए कॉटेज निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हेरिटेज लाइट और सजावटी पोल लगाने के काम भी शुरू किए गए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 3 नई नियमित रेल सेवाओं का शुभारंभ किया। इन रेल सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हुए हैं। उधर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की उपस्थिति में लगभग 28 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कन्वेंशन सेंटर और सभागार के निर्माण काम का भी शुभारंभ किया गया। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों की ओर से योग अभ्यास और योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कम बारिश री शंका वाला जिला ने पिछाण कैरर फसल वार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करण बाबत कहो। 21 जून न उजू भेवन वाली नीट यूजी परीक्षा न ध्यान रखता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे ऑनलाइन संदेश भेजण पर 22 जून ताई रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल तक 1,54,00,000 बत्ता नाम मंडाई चिया, 82,00,000 बत्ती महिला मजूर शामिल। और प्रदेश में फिर न्यारा न्यारा हादसा में 10 जना री मौत। समाचार सागर में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खरीफ 2026 री तैयारियां सारू आज नई दिल्ली में आला दर्जारा अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। ए दौरान कृषि मंत्री कम बिरखा री शंका वाला जिला री ओळखाण कर फसलवार तैयारी करण सारू कहो। वे फसलवार लक्ष्य बुआई री प्रगति और राज्यवार तैयारियां रो जायजो लीनो। मंत्री कपास री उपज बढ़ावण और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन रा बारा में चर्चा कीनी। सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहनारी पीठ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नियम जारी करी जिया आधार कार्ड रो बेजा इस्तेमाल नागरिकता रहवास रा पता रा सबूत रा तौर करण रा आरोप वाली एक अर्जी माथे सुनवाई करता थका आज केंद्र और राज्यों जवाब तलब कीनो। अर्जी में आधार नंबर ने केवल पहचान सत्यापन रा कागज रा तौर ही काम लेवन रो हुकम देवन री अर्ज करी ची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल भेवन सारू फ्रांस रा एवियो पूग किया है। श्री मोदी लगातार 7वीं दफा G7 सम्मेलन में भाग ले रहा है जबकि भारत इनमें 13वीं दफा शिरकत कर रियो है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों रो पक्ष और चिंतावां री बात रखेला। श्री मोदी नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनः स्थापित करना मुद्दा वाला कार्य सत्र में शामिल भेला। सत्र में G7 देशों और भागीदार देशों रा नेता विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक रा नुमाइंदा शामिल भेला। श्री मोदी कनाडा रा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन रा प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात रा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सागई मुलाकात करेला।

0: 21 जून ने ओजू भेवन वाली नीट यूजी परीक्षा सारू लाडला 24 घंटा में 10 लाख बत्ता उम्मीदवार प्रवेश पत्र डाउनलोड कीना। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए रे मुजब परीक्षा माय साफ कोई बधावण एर पेपर लीक री शंका खत्म करण सारू सरकार 22 जून ताई टेलीग्राम एप्लीकेशन रे जरिए ऑनलाइन संदेश भेजण माथे रोक लगाती नी है। एनटीए रे मुजब आ रोक नीट री परीक्षा रा दिन वारा तुरंत बाद ताई लागू रहवेला। एनटीए रे मुजब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने 30 जून ताई पहली पोस्ट करी चिया संदेश एडिट करण रो सुबितो बहाल नी करण सारू कही चियो है। प्रदेश में आई नीट यूजी परीक्षा साफ कोई सागर करावण सारू जरूरी तैयारियां करी जा रही है। जयपुर रा जिला कलेक्टर संदेश नायक बतायो कि परीक्षा केन्द्र माथे कानून व्यवस्था परीक्षा सामग्री ने हिफाजत सागे पुगावण और यातायात प्रबंधन सारू पुख्ता बंदोबस्त कर्या जावेला। केंद्र सरकार सोशल मीडिया माथे चाल रही E20 ईंधन काम लेवण वाली गाड़ियां रा बीमा दावा खारिज करण वाली खबर ने गलत बताई है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई साफ कीनो है कि E20 ईंधन काम लेवण वाली गाड़ियां री मोटर बीमा पॉलिसियां वैध है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल ताई 1,54,00,000 बत्ता मजूर नाम मंडा लीना है। आमाय 82,00,000 बत्ते महिलावां और 72,00,000 बत्ता पुरुष मजूर शामिल है। राज्य री श्रम शक्ति माय महिलावां री तादाद करीब 53% है जो माली और सामाजिक हलका माय महिलावां री बढ़ती भागीदारी बतावे है। ई श्रम पोर्टल माथे नाम मंडायोड़ा मजूर एक क्लिक कर और कई सामाजिक सुरक्षा योजनावां जुड़ सके है। वो पोर्टल मजूरा ने पेंशन बीमा स्वास्थ्य और रहवास समेत न्यारा न्यारा सुविधाओं जोड़े है। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 सारू रीको और लघु उद्योग भारती विचे आज जयपुर में करार माथे सही करी ची। इ मौके उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ कहो कि राज्य में भाटा और शिल्प री कोई कमी नहीं है पर इन्हें ओलखाण देवन री जरूरत है। वे कहो कि स्टोन मार्ट भाटा रा कारोबार सारू दुनिया रा खास मंच रा तौर सामी आयो है।
1: राजस्थान का जो पत्थर है वो निश्चित रूप से बहुत मशहूर, चाहे यहाँ का मार्बल हो, हमारा कोटा स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, सैंड स्टोन हो, नॉर्मल स्टोन हो, जैसलमेर स्टोन हो, हर तरह से, चाहे आधुनिक बिल्डिंग हो, चाहे पुरानी जो किले हैं, मंदिर हैं, वो हर तरफ हमें राजस्थान का पत्थर दिखाए। और ये पत्थर तो ऐसा है जिसके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, तो पत्थर में कोई कमी नहीं। अब ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है, हम एक दूसरे के साथ बैठकर किस तरह का मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किस तरह से जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम राजस्थान के पत्थर को और कितना ऊंचा लेंगे।
0: राज्य माए लारला 24 घंटा माए फिर न्यारा न्यारा हादसा माए 10 जना री मौत वेकी। 12 जिला रा छबड़ा हलका माए पार्वती नदी माए डूब जावण 4 जना री मौत वेकी। पुलिस रे मुजब ए लोग मध्य प्रदेश माए गुना रा रहवासी हा और छबड़ा कने गुगोर माए एक ब्याह माए शामिल वे वंसारू आया हा। बालोतरा जिला माए पाटोदी गांव कने आज रोडवेज री बस और कार री टक्कर रे कारण 4 जना री मौत वेकी। मरण वाला 4 ही जना कार माए सवार हा जो एक ही परिवार रहा। पाली जोधपुर हाईवे माथे मंडिया बाईपास कने एक बेकाबू कार सड़क रा डिवाइडर टकरा जावण रे कारण 2 जना री मौके ही मौत वेगी, जदके एक महिला घनी जख्मी वेगी जिन्ने पाली रा बांगड़ अस्पताल माए भर्ती कराई ची। भिवाड़ी माए एक कारखाना माए बनाए जा रहा हौद री भीत ढस जावणु 3 बच्चा री मौत वेगी और 3 बच्चा घना जख्मी वेग्या। काल दोपहर व्या ई हादसा माए एक बालक री काली मौत वेगी ही, जदके 2 बालक आज दम तोड़ती नो। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कहो है कि नीट पेपर लीक मामला माए दोषियां रे खिलाफ कार्रवाई करी ची है और मामला री जांच करी जा रही है। वे आज कोटा माए खबर नवीसा

0: सागे बातचीत कर रहा हा। श्री बंसल केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल री उपलब्धियां रो जिक्र करता थका इनने बदलता भारत री तस्वीर बतायो।
1: मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 सालों के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी सरकार की सारी सुविधाओं को सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। 7 दिन और 365 12 महीने यानी हमारा निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे इस देश का विकास हो, कैसे इस देश के हर गरीब तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, कैसे इस देश की महिलाओं को और सशक्तिकरण किया जाए, कैसे इस देश के किसानों को और उनकी समृद्धि बढ़ाई जाए, ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
0: मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागरी पत्रकार वार्ता रे दौरान मौजूद रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ही आज जोधपुर पुग्या। वह प्रबुद्ध जन सम्मेलन माई कहो कि मौजूदा दौर माई जानकारियां तेजियों पसरे है और बेहतर प्रौद्योगिकी रा दौर माए गांव ढाणी माए बैठा लोग ही आखी दुनिया रा हालात री जानकारी रखे है। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कां सूर्या कहो कि केंद्र सरकार पेपर लीक रा वाकया माथे रोक लगावन सारू करड़ा जतन कर रही है। वह केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल पूरा विवरण रा सिलसिला माए खबर नवीसा ने सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। मेवाड़ रा महाराणा प्रताप री काल 486वीं जयंती मनाई जावेला। ये मौके राज्यपाल हरिभाव बागड़े वाना संदेश माए कहो के महाराणा प्रताप जबरदस्त हिम्मत रो दर्शाव करता थका मुगला ने मेवाड़ भगा दीना हा। श्री बागड़े कहो के मायड़ भूमि री हिफाजत सारू वारी लड़ाई हमेशा याद राखी जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रताप जयंती रे मौके शुभकामना संदेश माए महाराणा प्रताप ने खुदरो माथो ऊंचो राखण सारू सब कुछ निछावर कर देवन वाला बताया। प्रताप जयंती रे मौके सलूम्बर जिला माए चावंडरा प्रताप स्मारक माथे खास कार्यक्रम राख्यो जावेला। पालीरा धान मंडी परिसर माए काल महाराणा प्रताप जन्म जयंती समारोह मनायो जावेला। इनु पहली महाराणा प्रताप रो राज तिलक वेवन रिठौड़ गोगुंदा माए आज खास आयोजन राख्यो जा रियो है। इन माए शामिल वेवन सारू लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ए गोगुंदा पधारिया। राजसमंद जिला रा मचींद माए राणा पूंजा पर्यटन स्थल मा थई प्रताप जयंती रे मौके भरी जियो 2 दिन रो मेलो आज पूरो फेंक्यो। अरब मौसम मौसम विभाग राज्य में आवता 4-5 दिन ताई प्रदेश रा कई हल्का माए आंधी और गरज चमक सागे बरसात रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार जताया है। पश्चिमी विक्षोभ सागे राज्य रे ऊपर बनिया चक्रवाती तंत्र रे कारण हवा माए लगातार नमी बनियोड़ी है। इनु कई ठोणा बरसात वेवन रा आसार है। इन बीच आज चूरू माए जोरदार बायरो बाजियो। सिंजानीपुर भीलवाड़ा जिला रा गुलाबपुरा माए झमाझम में बरसियो। बीकानेर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जैसलमेर नागौर पाली और फलौदी माए 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार बायरो बाजन सागे अंधड़ चालन री संभावना है। पांचना बंधारो पानी नेहरा माए छोड़वारी मांग करता थका गैर कमांड हलकारा किसान सवाई माधोपुर जिला रा खंडीप माए आज धरनो दे रहा है। किसान थोड़ी देर ताई दिल्ली मुंबई रेलवे लेन ने जाम कर दीनी। इनु अवध एक्सप्रेस गाड़ी ने थोड़ी देर ताई रोकनी पड़ी। मौका माथे जरूरी पुलिस जाप तो तैनात करी चियो है और हालात काबू माए है। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कम बारिश की शंका वाला जिला ने पिछाण कर और फसल वार कंटिजेंसी प्लान तैयार करण बाबत कहो। 21 जून ने ओजू भेवन वाली नीट यूजी परीक्षा ने ध्यान रखता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे ऑनलाइन संदेश भेजण पना 22 जून ताई रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल ताई 1,54,00,000 उम्बत्ता नाम मंडाई चिया 82,00,000 उम्बत्ती महिला मजूर शामिल। और प्रदेश में आए फिर न्यारा न्यारा हादसा में आए 10 जना री मौत। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसान वाणी प्रोग्राम सुनोनी असंग छोटा मोटा बहन है और बहन आपके सहदेव बांगड़ा का घना घना हेतर कोडू राम राम। भया चौपाल मत है हमारे साथ बावड़िया सुरेश भाई, तो थाने भी घनो घनो हेतर कोडू राम राम।
2: राम राम सहदेव भाई, आपने भी और किसान ने भी घनो और कोडू राम राम।
1: देखो राम सामा तो सुरेश भाई पण कटी कटी इंद्र भगवान है, जोरदार मेहरबान होएगा जकी के ती फर्स्ट लाए के थोड़ा देखन में आवे, कई बार देखा के जकी एक चून की जी बादरी फर्स्ट लाए बहुत जोरदार दिख रही है इन टाइम। बी के बाद में थोड़ा पाँच सात दिन बाद में बाकी किसान भाई लगे, बट अभी जगह गांव में बढ़िया बरसात हो गई है, कितनी बरसात लगे बांका भी चौका समाचार है, क्योंकि लगातार थोड़ा थोड़ा दिनों में बरसात होती रह जाए तो कि फसल ना तो वो पानी मिलता रहे। और कई थोड़ा देखा सुरेश भाई जैसे भगवान ही टाइम तो बहुत ज़्यादा मेहरबान हो गया, क्योंकि कई गाँव में तो धाव डंडा धापे जो तो लीलो हो गया वहाँ हम पानी हाणी देखा भाई आप पूरा जगह कह रहे हैं कि लगातार पहले तो क्या भाई ग्लोबल वार्मिंग को असर रहे, बरसात कम हुई, गर्मी ज़्यादा पड़ी, वहाँ बातों में ना उल्टो हो रही है कि भाई जब धाव डंडा का भी घास फूल हुई गो और भाई जटे नाडी खाड़ा
2: वापड़ा
1: बम पानी आई गो, तो देखा मैं लगे जून को महीना और पहले बड़े रखे होता जेठ में सब चीज़ को नेट। इस साल देखो जेठ अभी मत की मुना नेट लगी होने पानी को भी कौन लगी हो और कई गांव में छांटा छिड़को होते रही हो अभी लीलो हुई को जगह भी आप गाय आए दाव डंडा जगह वहाँ के अभी पेट में देखो आर लगातार हर आर पूते रही हो नहीं टाइम तो लीलो कट देखने मिला।
2: देखो सहदेव भाई ये तो है ही है, लेकिन कई जगह सहदेव भाई नुकसान भी हुआ कि भाई आंधी भी इंजा बरसात आई भी कोनी के तेज जकी बरसात आई आंधी यही जगह कई भाई बा लाल अब तक खेचा करी तो बे खेचा भी नुकसान भी हुआ।
1: अब ये खेती में चाल तरह बरसात ने उड़ी तरह बरसात हुए करें नुकसान करो कई गाँव में ही बैठा बहुत कोई मोटी बात को नहीं, बस खेती में तो देखो रोड रपट ये हुनता है चालता है जट है जट आज है जट राजा भोज है। अब बात है तो रोड ऑर्डर तो देखो कोई जरूरी को नहीं कि मुंडा जब मानसून आए बी टाइम कोई गाँव में बरसात हाल हुई को नहीं, बट हुई तो बाकी भी उसके बहुत कोई मोटी समस्या वाली बात को नहीं, पर बात यहाँ की है कि जो की भी बात हुई चौकी हुई है कि भाई इंद्र भगवान मेहरबान हो यार कई थोड़ा फायदा ज्यादा हुआ नुकसान तो कहेंगे नुकसान है नहीं बताऊंगा तो कोई खास को नहीं, पर आगे अपन बात करेंगे सरकार अपन की जबकि प्रधानमंत्री कृषि धन ध्यान योजना चला इनके फायदा की बात करा तो सरकार की सब मोटी प्रमुख पहला है कि जो लक्ष्य हो गया 100 जगह निम्न प्रदर्शन करने वाला जगह जिला है पन उत्पादकता बढ़ाए बन क्या ले रहा हूँ बा में फसलों में विविधीकरण करना है अपना किसान जो आय को सुधार करना है नहीं दामड़ा क्या कमाई जा खेती हूँ इन पर जो सरकार को एक योजना है बा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना नाम दियो और एक वो जो को मेन उद्देश्य हो कि भाई आप खेती करने वाला लोग जैन आजीविका क्या सुधरे बाकी जैन जेब में रिप्यू क्या जावे तो इनके जगह उद्देश्य आप बात करें सब मोटा तो उत्पादकता में वर्दी जबकि भी आप फसल ले कि भाई हमको क्या उत्पादन बढ़े हाँ जिला में किसी किसी चीज़ की फसलें भी सुटेबल है किस चीज़ की फसलें चौकी पैदावार दे और फसल के बाद में ऋण जो को वितरण करे वो क्या हिसाब हो और भी जगह तकनीकी सहायता थे बाकी सामान पूर्ति करो कि भाई आप फसल लगाओ तो जगह तकनीकी हिसाब आप काम में ले तो आप उत्पादन बढ़ी। बस एक जो योजना मुख्य उद्देश्य हो कि फसल विविधीकरण किसान जो पारंपरिक फसल है बन छोड़ देन आप देख माओ के देन इस गोल की फसल आई है बारह पंगा आप लाल पाँच दस साल में पहले तो आप सुने थे छोटा का बी टाइम सुने गए कोई फसल आए थे इनकी सब गोल नाम की आप आते ही जीरा रायडा मोटा ही चालता फिर बाद में सड़ी भी आएगी सौंप भी आएगी देन लगातार सरकार इन क्षेत्र में लगी उड़ी कि भाई किस चीज की
2: फसल
1: हाँ तो किस अपन क्षेत्र के लिए किस चीज की फसल है ज्यादा फायदा और सौदा देगी और भी के साथ साथ जिन आजीविका में सुधार कृषि में जरूरत है जगह भी अन्य क्षेत्र है जिन पशुपालन है बागवानी बानो बढ़ाओ देर किसान है जगह आए भी बढ़ाओ जैन कई थोड़ा अपन देखा कि जैन मंगरा पीढ़िया है अंगोरा टाइप की खेती है जैसे पथरीली जमीन है तो बट सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही कि आप बेर को बगीचो लगा सको अनार को बगीचो लगा सको क्योंकि बट बार बार भी खेतम जूते ही वे कोने क्योंकि अतः पत्थर है वहाँ खेतम है कि आप तय नहीं निकाल सक हर नहीं निकाल सका जमीन तो एलो ठोड़ी किसान आना हो पर भी की खेती में करण का लायक होने देना बाजरी नहीं बेच सको बट मूंग गुआर की नहीं कर सको तो बट सरकार को लक्ष्य है कि आप एन का खेतान है एन का चीला ने चिन्हित करा इस क्षेत्र ना कि बड़ो बापा बागवान है बढ़ोतरी देवा बीम जन बागवानी में एक ही जगह खाडो बनावना है और बीम जकी फसल है नींबू है बेर है अनार है तो आका बगीचा जैन आप अंजीर है आका बगीचा भी लगातार बढ़ रही है तो नयो नवाचार है और सरकार इन पर लाइक उड़ी है ई बजट को जो हो योजना हेबिंग के लिए 6 वर्ष खातर 24,000 करोड़ जो वार्षिक परिव्यय निर्धारित करियो कि बैन 24,000 करोड़ इबे लाग सके 12 महीना में तो सरकार के लिए पाचे को निर्गे कि सरकार किसान के साथ है और क्षेत्र में की हिसाब क्या कर उन्हें आगे ले जिला जगह देश भर की बात करें तो 100 आकांक्षी जिलों को सीधो लाभ मिले। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के 12 जिला जैसे बांदा चित्रकूट महोबा सोनभद्र आदि हाँ जिला शामिल किया जाने आखा देश का अपना जगह जिला ने स्व जिला टाल दिए बने कि अट भाई कहीं कहीं होना कहीं हिसाब हूँ आप खेती कर सका। और आगे अपन बात करा कि दिन लगातार सरकार तो चेचुड़ी है सुरेश भाई पर अपन ही खुद पहल करनी पड़ी तो ही अपन के मामला पेश पड़ी नहीं तो कहेंगे खाली राम और राज के भरोसे बैठे रही हूँ तो मामला पार पड़ेगा। तो इनके साथ साथ जैन सरकार एक योजना अपन पानी वास्ते चल रहा है कि अपन पानी क्या बचाना है तो भी अपन बता तो बाद में करा पर एक ले प्रे का सुना काम की बात
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर।
0: किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो आई सदैव काम की बात। और अब बात करें तो केंद्र सरकार के यानी की योजनाएं चला हुआ है जबकि किसान हिता मरे। तो एक दो योजना में आपने बता दूं, एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना में आया कि साल का 6000 रुपया सीधा किसान के खाते में गया करे और 4 महीने 2000 की किस्त गाय जाए, 4, 4, 4, 3, 12 महीने 3 किस्त आ जाए। और दूसरी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और तीसरी है जी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जगह में आपने ड्रिप सिंचाई आ जाए जगह 50-90% तक सब्सिडी भी देवे। फिर आवे बीज वितरण मिनी किट योजना, जगह मु कोई भी आप बीज खरीदा तो भी 50% तक सब्सिडी भी देवे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जबकि आपनी भूमि है भी को कार्ड बनार के भाई इन भूमि में कहीं कमी है, आप कहीं आगे नहीं कर सका, जगह कोई भी आप फसल है जबकि अच्छी तरह और पैदावार बढ़िया ले सका। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, जबकि आप न्यूनतम सब न्यूनतम कम ब्याज पर आप जो को ऋण है बैंक द्वारा मिलिया करे। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना है। तो यहाँ की सीधे भाई और एक बात करें भाई, यंत्रीकरण योजना, जगह भी आप कोई यंत्र खरीदे जाए खेती में जुड़ रहा है, या ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, सीड ड्रिल है, पावर टिलर है, थ्रेसर है, कोई भी अन्य आधुनिक उपकरण जो को अपनी खेती में काम करना आवे तो बे पर भी सरकार है जबकि टाइम टाइम माते सब्सिडी दिया करे, जगह कहीं किसान है जो आप खेती है जबकि बढ़िया तरीके कर सके।
4: देखो सीड ड्रिल पर की बात करें, आप थ्रेसर की भी बात करें, आप जो सरकार जो पैमान होते क्लस्टर बने आपका और आप क्षेत्र को जो कृषि अधिकारी है यानी कृषि प्रवेशक है सुपरवाइजर है बहुत जानकारी लेर के भेजे आप पाइपलाइन बात कहीं सुविधा फुहारा पर कहीं है ड्रिप सिंचाई पद्धति पर कहीं है। अगर आप कृषि यंत्र खरीदा कोई बीम पर भी सब्सिडी है तो भैया जबकि सरकार की घनिया योजना वहाँ तो आप बढ़ चढ़ और हम भाग ले और अपने फायदो ले चाहिए।
3: और सीधे भाई अगर ज्यादा कोई योजना के बारे में जानकारी चाहे तो हर गांव में देखा भाई कृषि परिवेशक है तो जार बने भी पूछ सके।
4: बात तो और करा पर मौ तो गांव गांव तर को योग नहीं और थे जगह गांव तर कर आया पतावड़ी करा भैया ते पूछते।
3: आ सीधे भाई मैं नागौरगन की और बट मनी जी शर्मा मिलिया और भाई सब्जी भावे कई खेती करे तो करा भैया ते पूछती।
4: तो सुनो भैया अतावड़ी
3: भैया जी अपन ने टाइम मिले मैं किसान भैया जाया करा और बेंडी बा हतावड़ी है जबकि थान ती पुगती करिया करा। और आज मैं नयो नागौरगनु देख जो थे उत्तराधी साइड बटी ने महावीर गौशाला एक खेत है भी मैं सब्जी लगेड़ी बट एक भाई बेटा है मैं करा तई राम राम सा।
5: राम राम सा।
3: काई नाम है सा?
5: मारा नाम मनीष शर्मा है।
3: मनीष जी, तो मनीष जी ये बार आगे मैं खेत के मैं देखू बटे काई काई सब्जी लगेड़ी है।
5: देखो बार सब्जी लगाई बीकानेर वाला काचर लगाया है,
3: ठीक है,
5: सब्जी वास्ते है और प्लस बीज भी तैयार कर रही हूँ मैं को में और अन्न उथान सामाजिक है पौंड करने जगह है एक मायने पालक लगाया है सब्जी वास्ते।
3: सब्जी वास्ते तो सब्जी मतलब घर पर तो कि मार्केट में बेचन
5: मार्केट वास्ते
3: बेचन वास्ते
5: 4 एकड़ में काचरा लगाया है 1 एकड़ में बारो पालक लगाया है।
3: और बाकी को जो खेत आगे तैयार करो जुताई करो खाद वाद और डाल
5: ओ खेत तैयार करियो। हाँ अब सब्जी वाली गोभी लगा हुआ जुलाई के पहले सप्ताह में जिकी बाजार में बेचन वास्ते
3: अगे तीजियां लगा लियो
5: लगा हुआ जन दीपावली हूँ पहली पहली प्रोडक्शन आ जाए और दीपावली तक फील्ड पूरा खाली हो जाए आगे लिए कोई दूसरी फसल आप लगा सका मायने।
3: तो भाव भी बढ़िया मिले थे?
5: भाव अच्छा मिले सर्दी की तुलना में भाव बहुत अच्छा मिले। मौसम को थोड़ा सो चैलेंज रही अगर है लेकिन आ चीज है की अगर सही सही तरीका एग्रोनॉमी मेंटेन करा तो भी के मायने फसल उत्पादन अच्छो ले सका और बाजार भाव भी अच्छा मिल जाए।
6: आज जमीन है जी आपकी खुद की है?
5: अपनी खुद की जी की जमीन है, आसोप मायने है और आ जमीन है जी की मार लीज पर ली ओड़ी है।
6: लीज पर ली ओड़ी है?
5: हाँ। लीज पर ली ओड़ी है तो लीज पर अटकाई। एक तो नागौर प्रॉपर नागौर को ही हूँ मैं तो वह दूरी पड़ जावे और बट गाय बहुत सारी संसाधना की सीमितता है। लाइट बट 6 घंटा ही आवे जबकि अर्बन कनेक्शन है सिटी के पास में जकू तो लाइट की उपलब्धता 24 घंटा है और बहुत सारी चीजें हैं मारे भी पास में रहे आनो जानो आसानी हो जावे। बाकी काम है जी को सगड़ो देख लो पूरो 20 एकड़ को फार्म है जी का मायने पूरो को पूरो ड्रिप करियोडो है। 20 एकड़ में ड्रिप लगाई दी है पूरी तो पानी की तो बचत हो गई है। जो भी खाद वगैरह देवा करा आसानी हो आपा खाद और में बचत हो जावे खाद की और भी के अलावा ज्यादा अपने लागत भी कम आवे
6: कम आवे। नहीं त्यार जी खेत तैयार करियो जुते ही करो भी टाइम कहीं कहीं खाद दियो।
5: देखो अबार जी को सामने 10 एकड़ को जी को फील्ड तैयार है ठीक है मायने अबार में 57 फटा खाद नकाई हूँ 10 एकड़ को मतलब
6: गोबर खाद।
5: हाँ 10 एकड़ को मतलब होगी 25 बीघा जमीन है इसमें 57 फटा में गोबर की खाद डलाई हूँ
6: ठीक है
5: और पच भी ने फैलवादी कराई हूँ क्यों आदमी हूँ तो देखो जी आले करीजे गोनी समय लागे ज्यादा जनगाई कराई हूँ बिखरवाई दी टोलिया खाली करा दी जैसी भी हूँ बरार कराई हूँ बिखरवाई दी माते एक दो बारिश होगी अब तो जो भी कोई मान लो खाद मिक्स ही सड़ी गड़ी खाद ही मेरे बावजूद भी कोई किसी तरह को मान लो भी मैं गर्मी हो गए तो वह कम होगी रे बर्तव्या का डार एकदम अप टू डेट फील्ड पड़ी है।
6: अभी पूरे में गोभी लगानी है?
5: अभी मैं पूरा में गोभी ड्रिपू लगाऊंगा।
6: काचरा बार लगाना इम ये सेम वही प्रोसेस करियो गोबर खाद ही डाली
5: गोबर खाद ही मैं 90
6: तो रासायनिक खाद काम में कौन
5: लूं? नहीं रासायनिक खाद उपयोग में कौन लूं? रासायनिक खाद सिर्फ उपयोग में लूं जेको गोभी को बीज उत्पादन करूं ना बी के मायने कुछ हद तक रासायनिक खाद को उपयोग करनो जरूरी रहे बी के बाना उत्पादन सही कौन मिले।
6: तो गोभी को बीज उत्पादन की बात है मन बात बताई तो वो क्या हुए तैयार कहीं करो?
5: देखो प्रोसेस सेम ही है कि मैं लगाऊं को लेकिन बेंको टाइम लग रही करे जैसे इनकी तो आपके आगे थी गोभी लगा रहे हैं बाजार में देवनाली आ तो कहीं है गणों गणों 90-100 दिन में फील्ड खाली हो जावे
6: ठीक है
5: और वह खेती है जी की अनुमानित बताऊं तो आपने लगभग 170-180 दिन लागे भी मैं
6: पहले जैसे लंबी आएगी
5: लंबी फसल आएगी लेकिन बीमे भी कहीं है कि मार्केट को कॉम्पिटिशन को नहीं। अब उदाहरण के तौर पर आपने बताऊं तो गोभी लगा हुआ सगली निर्भरता है जी की मंडी माता है गोभी हो सके 60 रुपए किलो ही बिके गोभी हो सके 20 रुपए किलो बिके वह भी टाइम का भाव काम देवे
6: काम दे
5: लेकिन बीज उत्पादन में आ चीज को नहीं क्योंकि मैं कंपनी क्लियर ट्रांसपेरेंट चीज बतावे कि भाई पौधो था फार्मो आया पहले तान ध्यान रहे ताको बीज का भाव बिकी
6: बिकी
5: जन गाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मार्केट की निर्भरता पूरी की था खत्म हो
6: जाए
5: तो भी मैं किसान कटी ना कटी खुद ने सिक्योर महसूस करे सुरक्षित महसूस करे
6: तो और कई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो सिर्फ गोभी और भी
5: नहीं सिर्फ इनमें गोभी है फूल गोभी और ब्रोकली
6: और था कि स्तर पर कई खेती लगाओ जैसे सर्दी
5: स्तर माता बार देख लो बार तो जैसे गोभी लगावा आ सीजन नहीं उड़ता है बाद में मैं 3 तरह का गेहूं लगाया करूं गेहूं मायने एक तो पूसा तेजस आया करे बा प्रीमियम वैरायटी है जिका माते मैं 3 सालों काम करूं बे पूर्णतया जैविक करूं मैं और 7,000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब हूँ जाया कर बोरा वाला गेहूं है जिका और डायबिटिक जो पेशेंट होया करे एक पूसा डी 161 वेरायटी आया करे बा है जी की मैं काला गेहूं होया करे बा लगाया करूं कुछ एरिया में 2 या 3 एकड़ में तो बे है जिका 11,000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब हूँ मैं सेल करिया करूं और गवां को सिस्टम हो रही है अगर है कि 31 अक्टूबर तक मार्केट ने जी का ऑर्डर आ गया भी आधार पर ही मैं हमारी फसल को बीजान करूं
6: और पहले तो ऑर्डर ले लियो
5: पहले ऑर्डर आ गया और बे ऑर्डर को मने कंप्लीशन करनो पड़िया करे लगभग
6: भाई चालो तांग 50 क्विंटल को ऑर्डर आएगो
5: हां तो भी आधार माते
6: भी आधार बत्ती एरिया के मायने
5: और प्लस जी को मारा 1 टन साल को मन सीड चाहिए सीड सिर्फ एक बार मैं मंगाई 2022 में पूसा हूं नई दिल्ली हूं एक बाद में मैं बाजार हूं कोई बीज कौन खरीद दियो
6: खुद ही तैयार करो
5: खुद ही तैयार करूं खुद तैयार कर ग्रेडिंग कर वो भी साइड में रख लूं वो अगले साल बीरो में बिजान कर दूं
6: तो जैविक ही करो पूर्णता।
5: हाँ पूर्णता जैविक
6: पूर्णता जैविक
5: जमीन में जिको केमिकल है वो देखो अब लैब की अगर बात करूं तो जो भी ग्राहिका ने मैं गेहूं भेजा करूं साथ लैब रिपोर्ट जाया करे और बीमा ने जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो 90% अबव रिया करे इस साल को हो 92.7% 92.7%
6: तो बहुत फूट रही है बहुत ही बढ़िया काम कर रही है मनीष जी। तो आप मनीष जी मन पढ़िया लिखा भी काफी लागो तो कति तक
5: पढ़ियोड़ो तो देखो पहले तो मैं हमारी ग्रेजुएशन तो हटा MDS यूनिवर्सिटी अजमेर पूरी करी फिर बाद में मैं हमारे CS कंप्लीट करी नहीं मैं फाइनल ईयर में आ ड्रॉप आउट हो गयो क्योंकि मारे बारे सिलेक्शन हो गयो और मैं देख लो आप मारी एमएससी करियोडो है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए मारो फाइनेंस में करियोडो है और पीएचडी मारो लीडरशिप में करियोडी है कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम हो 7.5 साल यूके रही हूँ मैं और कोविड के बाद मायने में पाछो इंडिया शिफ्ट हो गयो।
6: इंडिया क्या शिफ्ट हुआ तो लोग तो बाहर जावे देखा कमाऊ ने
5: लोग बाहर जावे मैं भी बाहर ही गयो लेकिन का ही है कि एक तो धांगी जी की कर्म भूमि है बात आन खींचर बुला ले मुख्यतः बारह दो महत्वपूर्ण तो कारण हाँ भारत शिफ्ट होने का भारत में भी नागौर शिफ्ट होने का कि जैसे ही मारी पीएचडी कंप्लीट हुई मैं माता पिता के एक ही बच्चों हूँ एक दीदी है बड़ा जी का मैरिड है और मैं एक ही हूँ तो बट है की सरकार है जी की माता पिता ने सेटलमेंट वीजा देवे कोनी मैं प्रयास भी काफी करिया मेरे को बिजनेस वीजा लगा उनको काफी प्रयास करिया लेकिन तर जैसे मैं 2014 में शिफ्ट हुई यूके तो सोचियो कि कोनी 2-4 साल बाद इमिग्रेशन रूल थोड़ा सा हड़का पड़ी या थोड़ा आसान हुई लेकिन बेहतर बतर मान चलो तो कठिन ही होता गया 2021 में जब फाइनल देखियो तो भी के मायने माता पिता ने अनुमति को नहीं। अब भाई चीज है कि देखो आपा बड़ा हो रहा है तो माता पिता भी बड़ा हो रहा है उम्र आपा नहीं निकल रही है तो बैंक भी निकल रही है तो ओ जी को मैं समय हूँ वो मैं बैंक साथ ही मैं वाइफ और बच्चा है जो माता पिता के साथ ही रहा मैं और दूसरो कारण हो कि खेती एक ऐसी चीज है कोविड आयो कोरोना हम सब चीजें रुक गई बड़ी बड़ी जो कुछ भी होना लेकिन खेती जी की है बा प्रकृति के साथ चले है ना बा बंद हो ही को नहीं तो बी टाइम कोविड के टाइम ही मैं ना 3 वीक वास्ते इसराइल गयो तो बट मैं मारो जो भी मैं खेती बाड़ी बट देखी करी तो दोनों ही कारण हाँ मिले जुलिया मान लो आप कि भारत आवनो ही हो और नागौर ही रहो हो और आ कोने की इंडिया में जॉब को नहीं मार वास्ते जेके कंपनी में बटे मैं कार्यरत हो बा कंपनी मने आईसीटी दे वही नोएडा मायने लेकिन और नोएडा जैसे मेट्रो सिटी है मैं लंदन तक रह आई गयो तो देखो मेट्रो सिटीज की कोई मैं लाइफ मानू को नहीं तो भी बेहतर है कि जमीनों जुड़ाव भी है
6: गांव की लाइफ भी
5: गांव की लाइफ है और खेती में कहीं है कि निर्भरता खुद की मेहनत पर ही है मतलब
6: तो किसान भाई जगह कोई आपकी बात सुने के भाई खेती के मायने थे तो लाभ है मैं अति पढ़ी कर अति नौकरियां छोड़ मैं आ चुकी हूँ खेती कर रही हूँ तो कोई किसान भाई सुने के भाई आप बात आपकी तो कहा कहना चाहोगे भाई इस तरीका खेती करो ला तो फायदो है।
5: देखो खेती मारो कोई अनुभव को नहीं हो आज 3 साल पहले तो और अब जो 3 साल में अनुभव लिए हूँ आपने खेती में तकनीक के साथ चालनो पड़ी
6: बिल्कुल
5: जो अपना बडेरा पारंपरिक खेती करता आजकल देखो लागत हर चीज की बढ़ चुकी है तो सब पहली बात है कि जिकी बाजार की लागता है सीड खुद को तैयार करो बिमतांग बचत हो जाए दूसरो रासायनिक खादा मत निर्भरता कम रखो खुद को जैसे गोबर खाद उपलब्ध हो तो ठीक है नहीं तो कोई फर्क कौन पड़नो अब तो हर चीज में सब्सिडी भी है चलो भी चीज में कौन जाओ आप सिर्फ इतो ही है कि खुद की केंचो खाद तैयार कर लो और भाई आप कोई आसान है गणो कोई कठिन को नहीं और भी आधार मत तकनीक के साथ चलो क्योंकि अपने अठे बहुत सारा चैलेंज है मतलब देखे जाओ तो बहुत सारी चुनौतियां अपने सामने क्लाइमेटिक है वातावरण वगैरह है चीजें देख लो बहुत सारी चीजें हैं मतलब तो तकनीक के साथ चालन जरूरी है सही दिशा में सही मेहनत करो और नई चीज मायने जरूर ट्रायल करो आ नहीं है कि पारंपरिक खेती में ही लगे
6: बिल्कुल वासा मनी जी के भाई आपको कहना ये कि तकनीकी खेती करो और जैविक विशेष तौर करो तो आप भले आपने 3,000 की चीज है जैसे दूना रुपया बिक सके
5: आपने मार्केट तैयार करो फिर मेहनत करो थे उत्पाद ने लेर अगर कॉन्फिडेंट हो तो जैसे आज थे आए हो बार मैं दांग साथ काचरा पैक करूं अगर एक आचरा मैं नहीं खा सकूं तो मैं दांग साथ पैक भी कौन करूं क्यों इस मायने में किसी भी तरह को कोई केमिकल कौन डाली
6: क्यों नहीं है। वासा मनीष जी आप बहुत बढ़िया जानकारी दी माने बड़ो अच्छो भी लगी और बातचीत भी आप बहुत अच्छे तरीके आपको घणो घणो धन्यवाद राम राम साहब
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: तो सुरेश भाई आप मनीष जी शर्मा जगह प्रगतिशील और उन्नत किसान आज को आप बतावड़ी कर ले रहा है भाया थे हुई पूगते और आंकी मनोवार में आज आप सुना रही है गीत मैं गाओ नहीं मारे दे तो देश तो सुनो भैया गीत

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: सुरेश भाई लाल सत्ता चौपाल में सवाल पूछी जो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत राजस्थान में की ठोड़ हुई तो सही पड़ उतरे सूरतगढ़ और लगे हाथी। आज को सवाल है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अगर आप सिंचाई करा तो कत्ता टक्का पानी की बचत हुआ। उम्मीद रखा कि अगले हफ्ते छदी चौपाल पर बैठन लाने तो भाई जो पानी पुगाए और सही पड़ उत्तर भेजेला और अब दौड़ता दौड़ता देखा तो पानी चौपाल पर पूगती हुई आज नागौर मंडी की बाजार भाव की तो भैया नागौर की बाजार मंडी ही भाव रही। आज मूंग है जगह 5,500 लगाए 7,850 और घुआ है जगह 5,000 लगाए 5,650 तक बिक्यो।
7: बात करा जीरा की सदे भाई तो 17,000 लेर 22,000 ऊंचो ऊंचो बिक्यो और सू बेचे की 7,000 12,000 सौ रुपया
6: इसे बोल का भाव रहा भैया नागौर की मंडी में नीचे नीचे 9,000 और ऊपर ऊपर 13,300 और असाड़े का भाव रहा 5,800 लगा 6,050 तक।
7: दाना मेती बावरी 5,700 लेर 6,100 और सिंध सु जो को 6,000 लेर 600 रुपया और तारा मेरे की बात करना तो 5,700 लेर 5,850 रुपया बिक्यो है।
6: ज्वार के भाव की बात करा तो भैया 4,500 लगा 6,000 तक और काला तिल है जगह नागौर की मंडी में बिक्या 9,000 लगाए 9,300 तक
7: और सफेद तिल है जगह सीधे भाई 10,000 लेर 10,500 और चना है जगह 5,350।
6: बात करें रायडा की तो भैया औसत 40% जगह को फैट आयो बिंग भाव रिया 7,150 रुपया प्रति क्विंटल जगह भी भैया ने लागे कि पंगा जिनसा का मन मुजुक भाव है तो भाई आपकी जिनसा नागौर की मंडी में ले आए बेच सके और अब घड़ी हमें जाओ तो चौपाल को तेड़ियो टाइम हो रही है पूरा तो सीख लिया पहले भैया ने सीख है बीजो उपचार कर बीज बोए और स्वस्थ फसल पाए। जबकि भी फसल लगाओ भैया तो इनके बीज के टीकाकरण जरूरी है बिना उपचार कर बोला तो वह बिल्कुल सुरक्षित रह ली और आपने स्वस्थ रह के लिए इसी के साथ ही सोपाल तेड़ो टाइम हो रही है पूरा तो आपका भाई सहदेव वांगड़ा ने
7: और सुरेश भाई ने दिया सीख कर
6: राम राम।
8: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी नागौर का जेम चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जीरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
3: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
3: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
3: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुम्दी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुम्दी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओ, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800-4405-59। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
4: साथियों नमस्कार।
5: नमस्कार साथियों,
4: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
5: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
4: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
5: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
4: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
6: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
7: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
6: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
7: यस।
5: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
4: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
5: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
8: सू
6: जी,
8: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
6: जी हाँ।
8: फिर मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
6: जी डॉक्टर साहब।
8: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
6: मैं पूछती हूँ।
4: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
5: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
9: 15, 40
6: क्या?
4: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
9: 13, 12, 11 ओह
6: जॉन्सी,
9: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
5: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
9: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
6: क्या कम हो गए हैं?
9: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
4: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
6: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
9: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
6: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
9: Only four.
6: मेरी तरफ देखो।
9: सू, only four. ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
6: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
9: 3 पत्तियां।
6: पत्तियां?
9: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
6: हाँ,
9: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
6: क्या लगता है?
9: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
6: क्या जॉन्सी?
9: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
6: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
9: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
6: हाँ
9: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
6: ओ जॉन्सी।
4: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया

0: बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
1: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
0: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
1: जोनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
0: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
0: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
4: हाँ जॉन्सी।
3: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
3: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
3: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?

0: मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
1: हाँ, हाँ। मैंने देखा जॉनसी, मैंने देखा।
0: देखो अब वो वहीं पर है, अभी वो नहीं गिरा सू।
1: हाँ जॉनसी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: हाँ, हाँ। दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
3: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉनसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉनसी, कैसा महसूस कर रही हो?
0: बेहतर।
1: ये लो कॉफी पियो।
0: थैंक यू
1: जॉनसी। एक बुरी खबर भी है।
0: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेरमन? वही बुरे कलाकार?
1: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही, मिस्टर बेरमन।
0: ओ गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
4: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
1: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉनसी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ,
0: मास्टरपीस।
1: हाँ।
0: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
4: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

अब जब सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी नागौर का ये चर्मी चैनल है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरम चैनल है, रात्रि के 8 बजे हैं, जिसे सुनिए एल्बम सॉन्ग्स। और आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत के गाए कुछ एल्बम सॉन्ग्स, और यह है पहला गीत।

एल्बम सॉन्ग्स में अभी आप सुन रहे थे अभिजीत के गाए कुछ एल्बम सॉन्ग्स। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है।

आकाशवाणी नागौर का ये चिन्ह चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं, जिसमें लोक संगीत कार्यक्रम घूमर। यह है घूमर की पहली पेशकश। आवाज़ किशन लाल वैष्णव की है।

सामने राम पूछ मरोड़े बेल का तो लेवे या परा काम। अरे दुनियादारी ओ गणे गारी जाने।

समस्वर में गए इसी गीत के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम घुमरब में ही संपन्न होता है। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली के अंदर से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर

0: देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में

0: जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना कर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमरीका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 103.7 MHz पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9 बजे लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गायकी को सुनने, और यह है सुगम संगीत की पहली पेशकश। आवाज मिताली सिंह की है।

भूपेंद्र सिंह के गाए इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अभी ही संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमि चैनल है। रात्रि के 9:25 हुए हैं। नीचे सुनिए, केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समाचार सेवा एकांश द्वारा विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में उसके अंतर्गत आतंकवाद विषय पर विशेष कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
2: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
1: जी,
2: विश्वास और जन कल्याण
1: जी,
2: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा। ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
2: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा, जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
2: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
2: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
2: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
2: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
2: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
2: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल, सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर की दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
2: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है जी। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है जी। लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां PM 2.5 और PM 10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है जिसको एयर पार्टिकल कहते हैं वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में है उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहां के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है
1: जी। प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक, इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे, लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे। अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
2: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8,10,00,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें, तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
2: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
2: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सरवाइव करते हैं
1: जी।
2: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टिमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टिमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
2: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है, और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं, और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
2: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
2: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम

0: इकोलॉजी की बात करते हैं तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है, गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए
1: जी,
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
1: जी?
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो की है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की

0: यार 477 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की

0: जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी
1: पृथ्वी
0: कभी
1: भी कभी
0: जीवन
1: जीवन था।
0: था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में समाचार सेवा एकांश द्वारा विशेष कार्यक्रम के श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। यह आकाशवाणी नागौर का चरण है। रात्रि के 9:55 हुए हैं। सुनिए देशकांड।

देश का गाना भी आप सुन रहे थे FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।